FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। आज रविवार है। शक संबत 1948 के वैशाख मास की 20वीं तिथि तदनुसार 10 मई सन 2026 इस समय प्रातः के 5:58 और 42 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारी पहली सभा अब प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हे गोविंद, तुम्हारी मधुर छवि, अधरों की मंद मुस्कान, चंचल मृगनयन और ये सुंदर स्वरूप, इसे देखकर भला कोई कैसे अपने वश में रह सकता है। आपका दर्शन हृदय को अत्यंत आनंद देने वाला है।

हे प्रभु, बार बार इस जीवन में काम, क्रोध, मोह, माया, विषय, द्वेष और मत्सर अनेकों शत्रुओं के बीच फंसकर मैं आनंद को खोज रहा था, परंतु अब ये भास हुआ है कि आनंद कहीं और नहीं, केवल आपके चरणों में ही आनंद बसता है। हे नाथ, आप अपने करुणा और दया से मेरे समस्त पाप को काटकर, मोह माया का ये विस्तार समेट कर मुझे अपने चरणों में वास दीजिए, अपनी माधुरी छाया के अंतर्गत शरण प्रदान कीजिए।

अभी आपने जिन स्वरों में इन भक्ति रचनाओं को सुना वे स्वर थे चित्रा रॉय, अजय कुमार, जगजीत सिंह और ये मातृवंदना आपने सुनी संवेद स्वरों में। इसी के साथ कार्यक्रम वंदना अब यहीं पर समाप्त होता है।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रकाश किरण। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं भगवान महावीर की वाणी। आलेख और वाचन स्वर मधुर शास्त्री का है। आइए सुने कार्यक्रम प्रकाश किरण।
1: अदुवा जियदुवा जीवो अयदाचारस्य शिच्छिदा हिंसा। किसी जीव का मरना या जीना हिंसा

या अहिंसा का रूप नहीं है। अयत्नाचार का नाम हिंसा और यत्नाचार का नाम अहिंसा है। रागादीन मणुप्पा अहिंसकत्तम तिदेशियम समये तेसिं च उत्पत्ति हिंसे तिजिणे निर्दिष्ठा। राग द्वेष आदि का उत्पन्न न होना यही अहिंसा है। राग आदि का उत्पन्न होना हिंसा है। पादोसिय अधिकरणीय

द्वेष करना, हिंसा के साधन ग्रहण करना, दुर्भावना से शरीर की क्रिया करना, दुख देने वाले कार्य करना, प्राणों अर्थात आयु, इंद्रिय, बल, श्वास का घात करना, इन पांच प्रकार के प्रयोगों को हिंसा की क्रिया कहते हैं। सब्बे सिजीवियं पियं आयतुले पयासु सब्बं जगन्तु समयानुपेहि अहिंसा तसथावर सब्ब भूय खेमं करी। सभी को अपना जीवन प्रिय लगता है, इसलिए सभी प्राणियों को अपने समान समझना चाहिए। जगत के सभी प्राणियों को समभाव की दृष्टि से देखना चाहिए। अहिंसा, त्रस और स्थावर सभी तरह के प्राणियों का कुशल क्षेम करने वाली है।

मनुष्य को यह समझना चाहिए कि यदि मेरे कारण से जीवों को हानि होती है तो यह इस लोक और परलोक के लिए किंचित भी श्रेयस्कर अर्थात कल्याणकारी नहीं है। पाणि वह मुसावाद अदत्तमेहुण परिग्रहा विरदो एस चरिताचारो पंचविहो दृढ़दम्भो। प्राणियों की हिंसा, मृषावाद अर्थात असत्य भाषण करना, अदत्त ग्रहण अर्थात चोरी, मैथुन और परिग्रह, इन पांचों से विरक्त होना, यही पांच प्रकार का चारित्र धर्म कहलाता है।

0: माया जह पुत्तम बड़े सु। सज्जन, पृथ्वी पर विहार करते हुए किसी भी प्राणी को कभी भी पीड़ा नहीं देते। वे सभी जीवों पर वैसे ही दया भाव रखते हैं जैसे कि एक माता अपने पुत्र आदि पर वात्सल्य रखती है। जल चंदन ससे भूतावरमणि सहणरसर्वाणाम न करन्ति कुणैजः अत्युज्जयम् हिद मधुर मिद वैणम्। पानी, चंदन, चंद्रमा, मोती और चंद्रकांत मणि भी उतना आनंद नहीं पहुंचाते जितना आनंद सार्थक, हितकर और मधुर विचार प्रदान करते हैं।
1: भगवान महावीर वाणी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम प्रकाश किरण के अंतर्गत। आलेख और वाचन मधुर शास्त्री का था। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:35 हो चुके हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के प्रसंग को स्वर दिया है वाणी जयराम ने। संगीतकार हैं सतीश भाटिया। आइए सुने श्री रामचरित मानस गान।

श्री रामचरित मानस की रचना प्रक्रिया में गोस्वामी तुलसीदास ने मानस रूपी एक अद्भुत रूपक की कल्पना की है। कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा का पाथेय नहीं है और ना ही जिन्हें संत जनों का साथ प्राप्त है, जिनके हृदय में भगवत प्रीति नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए ये मानस सर्वथा अगम्य अप्राप्य है। यदि कोई कष्ट उठाकर इस सरोवर तक पहुंच भी जाए तो उसे अज्ञान का ज्वर धर दबाता है, जिसके कारण वो इस पवित्र सरोवर में स्नान से वंचित रह जाता है। जो इससे वंचित रहा, जिसने कभी इसके पवित्र जल का पान नहीं किया, वो सरोवर की निंदा के अतिरिक्त और क्या कर सकता है। लेकिन जिन पर प्रभु की अनुकंपा है, उन्हें यह व्याधि नहीं छू पाती। वे दैहिक, दैविक तथा भौतिक तापों में भी नहीं जलते। इस पवित्र सरोवर से राम कथा रूपी कविता निकली है। इस कविता रूपी नदी में प्रभु का यश रूपी जल प्रवाहित होता है। इस कीर्ति नदी का नाम है सरयू, जो सबके लिए सर्वदा मंगलकारिणी है। वेद मत और लोक मत इसके दो किनारे हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आज की हमारी दोनों सभाओं में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। हमारी सांध्यकालीन सभा में रात्रि 10 बजे आप सुन सकेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम।

हमारी प्रातःकालीन सभा में आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी कि प्रातः के 6:50 पर आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेती की बातें। आज के कार्यक्रम का विषय रहेगा नया फल उद्यान लगाते समय सावधानियां। आपको जानकारी देंगे डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में लेकर आएंगे कुछ पुराने गीत आपके लिए प्रातः 7 बजे से। कार्यक्रम ब्रजमाधुरी के अंतर्गत आज आप सुनेंगे अपने ही फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी प्रातः 7:31 से। प्रातः 8:30 पर सुनिएगा चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि और 9 बजे प्रातः आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सुषमा भार्गव के गाए हुए कुछ भजन। कार्यक्रम बाल गोपाल का समय होगा प्रातः 9:30 से। आज इस कार्यक्रम में चर्चा होगी मदर्स डे गर्मियों में बच्चों का खान पान के विषयों पर। साथ ही आप वार्ता सुनेंगे आभा पांडे से, विषय रहेगा मदर्स डे। इसी कार्यक्रम में आप सुनते हैं बच्चों के मुख से कुछ कविता कहानी चुटकुले और पहेलियां भी। प्रातः 10 बजे आपको सुनवाएंगे एक परिचर्चा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार। इस परिचर्चा में प्रतिभाग करेंगे प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर अनीता गुप्ता और आपसे बातचीत करेंगे ओपी सिंह। दिन में 11 बजे का समय रहेगा फरमाइशी फोन इन फिल्म संगीत का कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी का। ब्रज लोकगीत के कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर आज आपको सुनवाएंगे मुरारी लाल शर्मा की गाए हुए कुछ लोकगीत। दिन में 1:15 पर आपको सुनवाएंगे श्रीमती माया श्रीवास्तव की लिखी हुई झलकी वचन, प्रस्तुति होगी सुरेश चंद्र की। सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे दोपहर 2:30 पर और हमारी प्रथम सभा अपराह्न 3 बजे समाप्त होगी। दूसरी सभा का प्रारंभ होगा संध्या 5:30 पर कार्यक्रम युवाणी के साथ में। युवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा मदरसा शिक्षा आधुनिकीकरण और आपको सुनवाएंगे इसी कार्यक्रम में झलकी नशे का जहर। आनंद बल्लभ गोस्वामी की लिखी हुई इस झलकी को प्रस्तुत करेंगे आर के त्रिपाठी। कार्यक्रम ब्रज ग्रामीण का समय रहेगा संध्या 6:15 का और आज आप इस कार्यक्रम में चर्चा सुनेंगे गर्मियों में दुधारू पशुओं का आहार और इसी कार्यक्रम में हमारे श्रोता सुनेंगे अपने पसंदीदा लोकगीतों का कार्यक्रम मन भावन। संध्या 6:45 पर होगा कार्यक्रम संध्या वंदन और 7:05 पर आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उद्धव शतक सोपाठ।

संध्या 7:31 पर आपको सुनवाएंगे फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम शाम सुहानी। आप भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं अपने व्हाट्सएप संदेशों के द्वारा। आपके व्हाट्सएप संदेश हमें आप भेज सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर 94122255575 पर। कार्यक्रम एक ही फिल्म से के अंतर्गत आज आप सुनेंगे रात्रि में 8:30 पर ये कार्यक्रम। सुहाने तराने लेकर आएंगे रात्रि 9:15 पर और प्रादेशिक संगीत का आनंद हमारे श्रोता ले सकते हैं रात्रि 9:30 से। सांध्यकालीन सभा रात्रि 11:10 पर समाप्त होगी। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: प्रातः के 6:50 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज कार्यक्रम का विषय है नया फल उद्यान लगाते समय सावधानियां। आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र सारस्वत।
1: किसान भाइयों, नया फल उद्यान लगाने से पहले उसके लिए उचित स्थान की देखभाल करना आवश्यक है। स्थान ऐसा होना चाहिए जहां पर पौधे अपनी वृद्धि सुचारू रूप से कर सकें, साथ ही साथ उन पर अच्छी फसल हो सके, जिससे उद्यानकर्ता को अधिक से अधिक लाभ हो। स्थान का चुनाव करते समय कुछ इन बातों का ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले हम जलवायु को ही लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि फल वृक्षों में विभिन्न तापक्रम सहन करने की काफ़ी क्षमता होती है, परंतु फिर भी कुछ फल वृक्ष निश्चित तापक्रम के ऊपर या नीचे फलत नहीं करते हैं। इसलिए विभिन्न फल वृक्षों को ऐसे तापक्रम में उगाना चाहिए जहां पर उसकी वृद्धि तथा फलत अच्छी प्रकार से हो सके। वर्षा की मात्रा और उसका वितरण फल उत्पादन पर विशेष प्रभाव डालता है। फूल के समय अगर वर्षा हो जाती है तो फूल के अंग नष्ट भ्रष्ट हो जाने से या पराग बह जाने से फलत नहीं हो पाती। अधिक वर्षा के कारण भी बहुत से फल वृक्षों की जड़ें सड़ जाती हैं तथा इसके विपरीत कम वर्षा होने से बहुत से पौधों को अत्यधिक सिंचाई देनी पड़ती है। मिट्टी को उद्यान का आधार कहा जाता है, इसलिए मिट्टी का चुनाव फल वृक्षों के अनुरूप होना चाहिए। फल उद्यान में दोमट या बलुई दोमट मिट्टी अच्छी समझी जाती है। जहां तक हो भूमि अधिक गहरी होनी चाहिए। इसके नीचे अधिक गहराई तक कोई भी कड़ी सतह कंकड़ों या पत्थरों की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी दशा में फल वृक्षों की जड़ें भूमि से अधिक गहराई तक नहीं पहुंच सकती हैं। परिणाम स्वरूप फल वृक्ष सूखने लगते हैं। अधिक उथली भूमि जहां पर हमेशा पानी भरा रहता हो फल उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त नहीं समझी जाती। फल वृक्षों की अच्छी फलत के लिए उपजाऊ भुरभुरी हल्की दोमट मिट्टी आदर्श मानी जाती है। अधिक क्षारीय और अम्लीय मिट्टी फल वृक्षों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। रेतीली मिट्टी में खाद तत्वों का अभाव रहता है, इसलिए इसको चुनने में अधिक खाद और पानी देना पड़ता है। ऐसा ज्ञात किया गया है कि मिट्टी में थोड़े चूने की मात्रा उपस्थित होनी चाहिए, क्योंकि इससे फलों में मिठास यानी कि मीठापन आ जाता है। अधिक भारी या चिकनी मिट्टी में जल निकास की असुविधा रहती है, इसलिए ऐसी मिट्टी का चयन भी न करना चाहिए। बगीचे का आकार और उसकी सफलता भूमि के धरातल के ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। इसके लिए बहुत ऊंची नीची भूमि नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि में जल द्वारा कटाव अधिक होता है तथा खाद्य पदार्थ मिट्टी के साथ बह करके नीचे चले जाते हैं। इसके विपरीत निचली भूमि में पानी एकत्र हो जाता है, जिससे पौधों की जड़ें सड़ जाती हैं। बाग लगाने के लिए मामूली ढलानदार और समतल भूमि अच्छी रहती है। बाग बाजार के पास होना चाहिए, क्योंकि फल शीघ्र नष्ट होने वाली फसल है। अगर इसको समय पर बाजार नहीं पहुंचाया गया तो फल सड़ने लगते हैं। किस्म खराब हो जाने से बाजार का मूल्य भी कम मिलता है।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

महुआ फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। गीत को लिखा था कमर जलालाबादी ने, संगीत था सोनिक ओमी का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत, फिल्म जब प्यार किसी से होता है से। गीत को आवाज़ दे रही हैं लता मंगेशकर। शब्द रचना हस जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का।

आबरू फिल्म का ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म ज्वारभाटा से।

लता मंगेशकर के गाए हुए इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।

0: आकाशवाणी का गोरखपुर से चंद पलों में आप सुनेंगे हमारे स्टूडियो से प्रसारित प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा
0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू। आज आयोजित होगी परीक्षा का दूसरा चरण। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा आयोजित द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर 2025-26 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर से आए करीब 1400 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार खेल की भारत की प्राचीन विधाओं से प्रेरणा लेते हुए खेल के सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का विकास हुआ है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का सशक्त माध्यम बन गया है।
3: प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभावी ढंग से लागू करने में सफलता प्राप्त की। पिछले 11 वर्ष में हमने देश के अंदर एक नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को व्यापक रूप से प्रभावी क्रियान्वयन होते हुए देखा है। आज खेल एक भारत श्रेष्ठ भारत और राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम बना हुआ है। खेलो इंडिया या फिट इंडिया मूवमेंट हो, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, या फिर उत्तर प्रदेश में ग्रामीण लीग की प्रतियोगिताएं या विधायक लीग की प्रतियोगिताएं, ये सभी हमें एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रही है।
0: प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण की स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। इसी क्रम में मिर्जापुर में कल जनगणना 2027 के मद्देनजर जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहां एनसीसी कैडेटों ने जागरूकता रैली निकालकर आम जन को जनगणना की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया।

0: में भी जागरूकता रैली और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। वहीं बिजनौर और गोरखपुर जिले में कल मीडिया के लोगों को स्व जनगणना करने के लिए प्रेरित किया गया। बिजनौर की जिला जनसंख्या अधिकारी वान्या सिंह ने बताया कि स्वगणना की प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जा सकती है।
1: स्वगणना कार्यक्रम है, ये 20 दिवसीय 3 दिन का कार्यक्रम है। आप सभी के माध्यम से हमने एक सहयोग की अपेक्षा की है कि ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार प्रसार हो, आप लोग भी अपना स्वगणना कराएं और आम पब्लिक को भी इसे करने के लिए मजबूत करें।
0: भाजपा विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कल पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आरएन रवि ने श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। श्री योगी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले शुभेंदु अधिकारी और उनके मंत्रिमंडल को बधाई दी और उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने लिखा है कि श्री अधिकारी के ऊर्जावान नेतृत्व में सोनार बांग्ला का संकल्प सिद्ध होगा और प्रदेश सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं आर्थिक उत्थान के अमृत काल में प्रवेश करेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के सभी जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और तहसीलों में कल लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना, प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया गया। मथुरा के जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार ने बताया कि लोक अदालत में दिए गए फैसलों पर अपील नहीं होती है।
2: लोक अदालत में जो वाद निस्तारित किए जाते हैं उसमें कोई भी उसकी अपील नहीं होती और हमेशा के लिए वाद का निस्तारण हो जाता है और पक्षकारों के मध्य जो सौहार्द का माहौल बना रहता है। इसमें यह भी फायदा है इसका कि सिविल वादों में कोर्ट फीस भी वापस मिल जाती है।
0: उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा कल से शुरू हुई। पहले दिन परीक्षा 2 पालियों में आयोजित हुई। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क रहा। आज परीक्षा का दूसरा चरण आयोजित होगा। प्रथम पाली में नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, संस्कृत एवं मनोविज्ञान सहित 5 विषयों और द्वितीय पाली में रसायन विज्ञान, भूगोल, हिंदी एवं कला सहित 4 विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। एक रिपोर्ट।
3: परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को AI आधारित CCTV कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। आयोग की ओर से परीक्षा के सघन अनुश्रवण के लिए प्रत्येक जनपद में 1-1 प्रेक्षक नियुक्त किया गया है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और निगरानी टीमें लगातार परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रही हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास निषेधाज्ञा लागू है और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल देवरिया में कृषि भवन के जीर्णोद्धार का लोकार्पण किया। इसके बाद उन्होंने भवन के विभिन्न कक्षों का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार की सभी योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ किया जाए। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कल महाराणा प्रताप की जयंती पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से महाराणा प्रताप को नमन किया। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने फर्रुखाबाद रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की 15 फीट से ऊंची मूर्ति का अनावरण किया। वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में महाराणा

प्रताप को पुष्पांजलि अर्पित की गई। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए और सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के साहस और राष्ट्र रक्षा के लिए उनके द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करना चाहिए। हापुड़ जिले में कल देर रात गंगा एक्सप्रेसवे पर हुई सड़क दुर्घटना में एक बच्चा और दो महिलाओं सहित तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बरेली से लुधियाना जा रहा एक कैंटर डिवाइडर से टकराकर पलट गया, जिसमें तीनों लोग दब गए और मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में दो अन्य व्यक्ति घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया। ITF जूनियर सर्किट की तीसरी वरीय भारत की कार्तिका पद्म कुमार ने कल ITF जूनियर J30 लखनऊ टेनिस टूर्नामेंट में बालिका एकल की ट्रॉफी जीत ली। वहीं एक दिन पूर्व युगल खिताब जीत चुके ऋषभ सरोहा ने बेहतरीन लय बरकरार रखते हुए बालक एकल में भी विजेता होने का गौरव हासिल किया। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में द्वितीय अखिल भारतीय पुलिस बैडमिंटन क्लस्टर प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। कहा, पिछले 11 वर्षों में देश में नए स्पोर्ट्स इकोसिस्टम का हुआ है विकास। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से है जारी। कई जिलों में जागरूकता रैली और संगोष्ठी के किए जा रहे आयोजन। प्रदेश भर के न्यायालयों और तहसीलों में किया गया राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। पारिवारिक विवाद, उपभोक्ता मामले और बैंक रिकवरी जैसे मामलों का किया गया निस्तारण। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रवक्ता संवर्ग की लिखित परीक्षा कल हुई शुरू, आज आयोजित होगा परीक्षा का दूसरा चरण। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 7:31 हुए हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

कार्यक्रम ब्रजमाधुरी सुन बिवारी हमारे सभी श्रोता साथियों को जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। आज रविवार को दिन और आज आपके काजे हम कार्यक्रम ब्रजमाधुरी में लेके हाजिर हैं आपके पसंद के आपके फरमाइश के लोकगीतन को कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी। आज के कार्यक्रम ब्रज लोक लहरी में आप सबके संदेश शामिल करवे को समय आए गए है और लगातार आपके जो संदेश हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करें वहाँ से जो सबसे पहला संदेश हमारे जा कार्यक्रम के ताई हमें मिलो आज प्रातः। तो सबसे पहले जो संदेश को हम शामिल करें हैं जी हमारे श्रोता हैं अमलतास अम्बरीन होम्स कटारा भोपाल मध्य प्रदेश के श्रोता, योगेश्वर सिंह भारतीय, भैरव प्रताप सिंह भारतीय, लोकेंद्र प्रताप सिंह भारतीय, प्रेम बाई भारतीय, गोपाल भारतीय, कृष्णा भारतीय, अमिता भारतीय, श्रीमती ललता बाई भारतीय, न्यू पैसिफिक अपार्टमेंट बावड़िया कला भोपाल से डॉक्टर शेखावत सिंह भारतीय, डॉक्टर गीता श्यामनानी, दुर्गा भारतीय, अमिता भारतीय, ग्राम पोस्ट बाया तहसील रेहटी जिला सीहोर मध्य प्रदेश के हमारे श्रोता हैं अमर सिंह भारतीय, महेंद्र भारतीय, सचिन भारतीय, कोशाबाई भारतीय और उनके समस्त संगी साथी। और भैयाओं अगले हमारे श्रोता हैं श्रीराधा सिटी गोवर्धन रोड मथुरा के शारदा प्रसाद प्रजापति, लक्ष्मी प्रजापति, बेबी व्योमिनी, पुरंजय प्रजापति, कविता, गोविंद, सिमरन और समस्त प्रजापति परिवार को जो संदेश हमने शामिल कियो। और जे हमारे श्रोता हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा और इनके सगरे संगी साथी। आओ आप सब की फरमाइश को करें पूरो और सुनवा में आपको श्रीमती नीरज के स्वर में जा लोकगीत को।

मेरे मन बस गए री। और श्रीमती नीरज के गायब है जा लोकगीत के बाद अब अगली फरमाइश आपकी पूरी करें। तो अगली फरमाइश के तई जो संदेशो हमें मिलो है, जसवंत नगर जिला इटावा ते गोकर्ण सिंह दिव्या नैतिक संगीता और इनके समस्त परिवारी जनन को। इनके संग ही संग जे हमें संदेशो मिलो है, ब्रिज रेडियो श्रोता मित्रन को, उनके नाम हैं वीरेंद्र कुमार भोली, मनीष कान्हा, कोमल यादराम, पिंकी, प्रीति, लड्डू, वैष्णवी, ओमवती, जय श्री राधे इन्होंने कही है। तो जय श्री राधे आप सबों को। जे हमारे श्रोता हैं पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा ते अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत और सुलोचना भगत। इनके संग ही संग एक और श्रोता जुड़ गए हैं हम संग, जिनको नाम बताएं आपको तो जे हैं प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोड़ के रोहिदास चौक पंढरपुर सिटी ते। ग्राम गोपी की नगरियां ते मिठनलाल सारस्वत, नेहा, नीरज, निकिता और इनके पापा मम्मी। ग्राम नगला पोला ते विजय सिंह, भानु प्रताप सिंह, अनुराधा, रामानुज, राधिका, पवन, करण, भोला, नमन और इनके परिवारी जन। इनके संग ही संग ग्राम नौधरा ते भी जुड़ गए हैं कोमल मास्टर, जशोदा, सूरज, रोहित, चंचल, संजना, शिवानी और इनके पापा मम्मी। ग्राम कुमोदवन से जुड़े भए हैं।

सुनील, रचना, गब्बर और इनके समस्त परिवारीजन। हाउसिंग बोर्ड भरतपुर से हमारे श्रोता हैं अजीत, सोनिया, शिवांश, चुन्ना और इनके पापा मम्मी। अब ये संदेश है पप्पू राजा खुशदिल, संगीता रानी जिंदल, हंसमुख लाल खुशदिल, पप्पू मह खुशदिल, सुनीता रानी जिंदल, आरजू पप्पू खुशदिल, संजीव कुमार जिंदल और समस्त खुशदिल परिवार को चकला बाजार समाना शहर पंजाब दें। और जी हमारे श्रोता हम संग जुड़ गए हैं, जी हैं प्रदीप भैया बिरला नगर ग्वालियर ते। हमारे अगले श्रोता हैं पलारी छत्तीसगढ़ ते नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। इन सब ने सुनो चाहो है माधुरी शर्मा के स्वर में गायब है जा लोकगीत को, तो आओ सुने हैं आप सबकी पसंद।

अभी आपने सुनो माधुरी शर्मा के सरमेजा लोकगीत को, जाके ताई हमें फरमाइश आई हती ग्राम जावरा ते अंजलि चौधरी, मयंक मयंक चौधरी, डिंपल चौधरी, देव चौधरी, हिमांशी चौधरी, अनाया चौधरी और समस्त चौधरी परिवार को। इनके स्वर को सुनो चाहो हो तो उमा शर्मा और मिला शर्मा, नितिन सचिन राधिका निधि ने धोली प्याऊ मथुरा ते। और अब सुने हैं कि अगली फरमाइश आपकी कौन सी है, तो अगली फरमाइश के ताई आपके संदेशन को शामिल कर ले। तो जे संदेश आयो है राजू लवानिया, पंकज कुमार और अर्पण जी, खेमेश जी का खंदौली आगरा ते। और हमारे अगले श्रोता जुड़ गए हैं हम संग, जे हैं जिरौली सांसनी हाथरस ते, रामेश्वर चौधरी, शिवानी चौधरी, बिट्टू चौधरी और प्रिंस चौधरी। इनके संग ही संग जे श्रोता हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा, पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ के हमारे जो श्रोता हते। और ये हैं रश्मि, आशीष, शरेंद्र, राधा वैली, मथुरा के हमारे श्रोता। इनके संग एक और श्रोताओं को जे फरमाइश मिल गई है, जे हैं खमहरिया छत्तीसगढ़ ते, साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार और इनके सगरे संगी साथी। दतरेंगी से जुड़ गए हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। इनके संग हमारे जो श्रोता जुड़े भए हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौखुटी बुलंदशहर के मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान अरजान और अब्बान अब्बासी। इनके संग एक और श्रोता आए गए हैं और जे हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ ते, रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिंपल देवांगन। और जे हमारे श्रोता हैं डोगर गांव राजनाथ गांव छत्तीसगढ़ ते, राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये को। और आपको सुनवावें आपकी पसंद पे सावित्री शर्मा के गाए भए जा लोकगीत को। सावित्री दीक्षित की गाए भए जा लोकगीत को।

सावित्री दीक्षित के स्वर में आपने सुनो जा लोकगीत को, और कुछ फरमाइश अभी भी शेष रह गई हैं तो भैयाओं लियो आपकी फरमाइशों को भी शामिल करें। समय तो अब शेष ना रह गया है, नेक्स्ट शो जरूर आपको सुनवे को मिलेगा लोकगीत। तो पहले आपके लोकगीत को सुनवाएं, बाकी बात पढ़ेंगे आपके नामन को।

हमारे श्रोता हैं चंडीगढ़ से सतीश अनिजा, बिमला अनिजा, और ये हैं ग्राम माटते शैलेंद्र प्रताप सिंह, विनेश प्रताप सिंह और समस्त प्रताप परिवार।

बजे स्वर है डोरी लाल गोला को और जाके तई आपकी फरमाइशन के नाम पढ़े हैं। बस स्टैंड सुनवाहा तहसील बक्सवाहा जिला छतरपुर बुंदेलखंड से हैं जुड़े भय बहादुर चक्रवर्ती नंद किशोर चक्रवर्ती छोटा गोलू बड़ा गोलू भारती आरती काजल करण और इनके समस्त परिवारी जन इनके संग ही संग जो

जी हमारे श्रोता हम संग जुड़े महिपाल सिंह बघेल नगल देवी सिंह। और श्रोताओं अब कार्यक्रम को समय से शेषना है तो अब हमें आपकी आज्ञा चाहिए, तो हमें देव आज्ञा स्वीकारो हमारी। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ब्रज माधुरी। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8 बजने वाले हैं, आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला प्रसारण।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वरंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मांग

0: आकाशवाणी न्यूज हैदराबाद।
1: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंदौर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
3: टीवीके के जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरपू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद टीवीके को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस वीसी के वामपंथी दलों और आईयूएमएल के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारिन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
4: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए को 18 विधेयकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विवेन एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी

0: किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
3: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमरीकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियोक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमरीकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
2: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
4: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में, अंजी ने 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा IPL क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
2: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्य

0: संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to visit Karnataka and Telangana today to launch multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad and participate in 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. TVK Chief C. Joseph Vijay to be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu this morning. President Draupadi Murmu appoints N. Rangasamy as Chief Minister of Puducherry. Centre operationalises 4 labour codes with publication of rules. DRDO achieves major breakthrough in hypersonic missile development by conducting long-duration test of scramjet combustor. And 9 Indian boxers advance to finals of Asian Boxing Under 15 and Under 17 championships in Tashkent. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. More from our correspondent.
3: Prime Minister Narendra Modi will address the devotees of Art of Living Foundation and inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir or Meditation Hall at the premises. He will also launch the year-long projects of the foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to Art of Living International Center, the Prime Minister will address the BJP leaders and workers at HAL Airport. The leader of the opposition Karnataka Legislative Assembly, R. Ashoka, has informed

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रस्तुत है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। आज इस कार्यक्रम में हम चंद गीत सुनेंगे जिस गीत को सुनकर हमें हमेशा अपनी माँ याद आती है। जी हाँ, आज दुनिया भर में सभी लोग अपनी माँ के प्रति समर्पित होकर अपने भावों को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, गा रहे हैं और व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि आज मदर्स डे मनाया जा रहा है। तो हम भी अपने इस कार्यक्रम में आज माँ के गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं और जी लेते हैं उन भावों को जो हमारे अंदर और बाहर चल रहा है।

वर्ष के मई माह के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। मन में आती है ये बात कि मदर्स डे कैसे, कहाँ से शुरुआत हुई होगी इसकी। कोई एक व्यक्ति जिसने अपने माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहा, उसी से शुरुआत हुई इस मदर्स डे की। एना जार्विस, ये अमेरिकी व्यक्ति ने 1908 में अपनी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इस दिन की शुरुआत की और बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा इस दिन राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया और उसके बाद फिर ये मदर्स डे के रूप में सुविख्यात हो गया। अधिकांश देशों में मई के रविवार को दूसरे रविवार को मनाया जाता है, कहीं कुछ देशों में मार्च और अन्य दिनों में भी इसकी बात की जाती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन हम सब मिलकर अपनी माँ, अपनी जननी को याद करते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में तो कभी भी माँ का दर्जा दोयम रहा ही नहीं, यहाँ तो जननी को सर्वोपरि मातृ देवो भव कहा गया है और उसी परंपरा को निभाने वाले हम सभी अब इस आधुनिक दौर से जुड़कर, इन चीज़ों से जुड़कर और ज़्यादा और भावुक हो चुके हैं और अपनी माँ के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए, प्यार व्यक्त करने के लिए इस दिन को भी चुन लिया है। क्योंकि माँ का तो वैसे कोई दिन नहीं होता, लेकिन माँ के बिना कहीं कोई किसी का दिन हुआ है क्या? लबों पे उसकी कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती।

माँ बिना कुछ कहे ही सब कुछ जान जाती है। वहीं दिल में छलकते हुए प्यार को बच्चे अपनी माँ से कम ही कह पाते हैं। वो तो कह पाते हैं अपनी ज़रूरतों को, अपने नुकसान को, अपनी भरपाई करने के तरीके को सीखते हैं, डर को कहते हैं, अपनी बातें कहते हैं, लेकिन प्यार को छलकता हुआ माँ के साथ कहाँ कोई कह पाता है। इसलिए शायद आज के दिन की सार्थकता और बढ़ जाती है कि जब हम अपना प्यार माँ के प्रति व्यक्त करें, और माँ के प्रति प्यार व्यक्त करने के लिए कोई तोहफे की आवश्यकता नहीं। हमें लगता है माँ के प्रति सम्मान, उनकी बात मानना, उनकी सेवा करना, उनकी फिक्र करना ही बहुत है, काफ़ी है, जिससे माँ हमें अपना और अपना समझती है। और ये सच्चाई हम दोनों को, यानी कि माँ और बच्चों को, दोनों को खुश करने वाली होती है। माँ जन्नत का फूल है, प्यार करना तो उसका उसूल है, दुनिया की मोहब्बत सारी फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज़ करना इंसान की सबसे बड़ी भूल है, माँ के कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है।

बच्चों की पहली गुरु उसकी माँ होती है। माँ ही है जो उसे सारे संसार से मिलवाती है, सारे रिश्ते नाते उसको सिखलाती है। बच्चे जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, माँ उनसे दूर होती चली जाती है, लेकिन वो शरीर से दूर होती है, मन से नहीं। बच्चे जब पढ़ने के लिए निकल जाते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं, तो ये नहीं हो पाता कि हर जगह माँ उनके साथ हो, लेकिन उसकी जो छाया है वो बच्चों के हमेशा आसपास होती है। वो अपने बच्चों के भले के लिए दिन भर रात भर ईश्वर से प्रार्थना करती है, और बड़ा आश्चर्य होता है देखकर जानकर कि एक ईश्वर दूसरे ईश्वर को मना रहा होता है। जी हाँ, माँ सबकी ईश्वर ही तो है, जिसने अपने पेट में बालक को 9 महीने रखकर जन्म दिया, अपनी जान पर खेलकर एक दूसरा जीव धरती पर लेके आती है। उस माँ का उपकार कोई कैसे भूल सकता है।

इस जमाने में एक सच्चाई ये भी आ चुकी है हम सबके सामने कि जिसकी उंगली पकड़कर शिशु, बालक और युवा बन जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा होते ही वो अपना हाथ झटक कर माँ से अलग कर देता है, या कहो कि माँ से अपने आप को दूर कर देता है और दूसरी दुनियावी झमेलों पर उलझ कर बड़ी खुशी के साथ उन झमेलों को स्वीकार कर लेता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होती है। माँ का सम्मान किसी एक दिन का मोहताज बिल्कुल नहीं, वो तो जिंदगी के पहले पल से

लेकर अंतिम पल तक साथ होना चाहिए। यह हर बच्चे की दुआ होनी चाहिए जिसे ईश्वर को भी स्वीकार करना चाहिए। सर पर जो हाथ फेरे तो हिम्मत मिल जाए, माँ एक बार मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। दोस्त बदल जाते हैं, वक्त बदल जाता है, मोहब्बत बदल जाती है, लेकिन माँ वो कभी नहीं बदलती। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। माँ वो समंदर है जिसका कोई छोर नहीं होता।

0: जिस प्रकार हम आज मदर्स डे मना रहे हैं, वैसे ही हर दिन माँ का सम्मान हमारे तन मन में होना चाहिए। हमारी सेवा, हमारे बोली, हमारे लहजे से माँ को कभी कोई दुख नहीं होना चाहिए। शायद इस बात को हम आज सोच लें, आज इसका प्रण कर लें, तो ये वर्ष भर और आगे आने वाला हर समय हमारे लिए बेहतर हो और हमारा आज का दिन, ये आयोजन, ये उत्सव सार्थक हो। और इसी गीत के साथ अब अपने कार्यक्रम गीतांजलि को यहीं पर समाप्त करते हैं।
1: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में, अरे वाह।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कार्यक्रम सुगम संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर सुषमा भार्गव के गाए हुए कुछ भजन।

माई मैं तो गिरधर के रंग राती। अभी आपने सुना डॉक्टर सुषमा भार्गव के स्वर में ये भजन, और आइए कार्यक्रम सुगम संगीत में सुनते हैं ये अगली रचना मीराबाई की, डॉक्टर सुषमा भार्गव के स्वर में।

आकाशवाणी के मथुरा वृंदावन केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। और आइए अब इस कार्यक्रम में सुनते हैं ये गीत, स्वर डॉक्टर सुषमा भार्गव का है।

डॉक्टर सुषमा भार्गव के गाए हुए इसी गीत के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब यहीं पर समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 9:15 होने को हैं। आपसे थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे सामयिक चर्चा। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
1: देश में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। इस बार जनगणना दो चरणों में पूरे डिजिटल तरीके से की जा रही है। उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण में मकानों की गणना की शुरुआत 22 मई से होगी और उससे 15 दिन पहले 7 मई से स्वगणना की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा क्या है, जनगणना को सटीक और तय समय में पूरा करने के लिए क्या तैयारियां की गई हैं, जनगणना में लगे कर्मियों को किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, डेटा सुरक्षा और गोपनीयता को बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, इन सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश की जनगणना कार्य निदेशक और उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा जी। आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है मैम।
2: धन्यवाद ओम जी।
1: उत्तर प्रदेश में जनगणना के पहले चरण को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं? 30 दिनों के भीतर इतने बड़े राज्य में मकानों की गणना पूरी करने के लिए क्या खास रणनीति बनाई गई है?
2: उत्तर प्रदेश एक व्यापक प्रदेश है और हमारे यहाँ जिस प्रकार की जनसंख्या की चुनौतियां हैं उसको देखते हुए हमारे यहाँ 1400 चार्ज अधिकारी बनाए गए हैं जो देश में सबसे अधिक चार्ज हैं। इन सभी में तहसीलें, नगरीय निकाय, छोटे बड़े नगरीय निकाय, छोटी बड़ी तहसीलें, सारे राजस्व ग्राम सभी सम्मिलित हैं। और इन 1400 चार्जेस में हमारे 5.5 लाख प्रगणक और सुपरवाइजर्स अर्थात पर्यवेक्षक लगेंगे। हमारे पास एक निश्चित समय है जिसमें मकान सूचीकरण जो हमारा प्रथम चरण है जनगणना का उसका कार्य संपन्न किया जाना है और इसी के लिए आवश्यक है कि हम हर घर तक पहुंचे, कोई भी व्यक्ति छूटने ना पाए, कोई भी क्षेत्र छूटने ना पाए। और 5.5 लाख लोग इस कार्य को 22 मई से 20 जून के मध्य घर घर जाकर करेंगे। और उससे पहले हमें यह भी आशा है बहुत सारे नगरीय क्षेत्रों में जहां पर कई बार कोई घर पर नहीं मिलता है या लोगों का ऐसा मानना होता है कि हम अपना डेटा खुद देखना चाहते हैं, तो इस बार स्वगणना की भी सुविधा है पूरे देश में। 7 मई से हमारे यहाँ स्वगणना की सुविधा लागू है। इसमें कोई भी

0: व्यक्ति अपने घर से बैठकर जो हमारा जनगणना का तय प्रश्नावली होती है पूरे देश के लिए, जिसमें 34 प्रश्न रहते हैं, वो घर से कोई भी बैठकर भर सकता है और उसको एक यूनिक कोड उसके मोबाइल फोन के नंबर के हिसाब से उसको एक यूनिक कोड मिलेगा। वो यूनिक कोड जब आपका प्रगणक आपके घर आएगा 22 मई के बाद, आपको उसके साथ शेयर करना है। आपके पास समस्त विकल्प उपलब्ध हैं उस समय भी। आप ये भी कह सकते हैं अपने प्रगणक को कि आपने जो डेटा भरा है उसको संशोधित कर दें। आप उसको स्वीकार भी कर सकते हैं, आप उसको अस्वीकार भी कर सकते हैं। आप अपने प्रगणक को ये भी कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो स्वगणना की प्रक्रिया है उसको एक तरफ करते हुए पूरा नया प्रश्नावली को भर दे।
1: बुलंदशहर, बहराइच और प्रयागराज जैसे जनपदों में प्री टेस्ट हुआ, उस दौरान क्या महत्वपूर्ण बिंदु निखर कर सामने आए?
0: हम लोगों ने तीन जनपदों में, जिसमें से दो जनपद हमारे बुलंदशहर और बहराइच, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में प्री टेस्ट हुआ। इनफैक्ट बहराइच में जो हमारा क्षेत्र था मिहीपुरवा, वो जंगल से सटा हुआ क्षेत्र था, तो उसकी अलग लेवल की चुनौतियां रहती हैं। और प्रयागराज में जो हमारा क्षेत्र था वो नगर निगम क्षेत्र था और हमने चौक का एरिया लिया था, बिकॉज जो हमारे ओल्ड सिटी सेंटर्स होते हैं वो अक्सर बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। तीनों जगह हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट लर्निंग्स थी। सबसे महत्वपूर्ण लर्निंग तो ये थी कि कहीं ना कहीं नगर निकाय या ग्रामीण या तहसील स्तर पे जनगणना को ये सोच पाना कि कोई लोकल अधिकारी उसको कंप्लीट करा पाएगा, ऐसा संभव नहीं होता। जनगणना एक बहुत व्यापक प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे विभागों का सहयोग चाहिए होता है, जनमानस का सहयोग चाहिए होता है, हमारे जो लोकल लीडर्स होते हैं उनका सहयोग चाहिए होता है। सभी के सहयोग के माध्यम से हम लोग ये जनगणना का प्रोसेस कंप्लीट करा पाते हैं। दूसरा, हमने ये भी देखा हमारी बहुत सारी महिलाएं हमारी प्रगणक थी और उन्होंने बहुत सबने अपनी अपनी लर्निंग्स शेयर की, उनको ऐप से काम करना बहुत अच्छा लगा, तो हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग्स देखी। कहीं ना कहीं आपका प्रगणक भी जब क्षेत्र में जा रहा होता है तो उसके मन में भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि हो सकता है जो क्षेत्र मुझे आवंटित किया गया है वहां की जनता कोऑपरेट ना करे। तो हमारा ये भी अनुरोध रहता है सभी से, ये हमारी अपील भी रहती है जनता से कि जब जनगणना कार्मिक आपके यहाँ आएगा उसके पास उसका आईडी भी होगा, वो आपका कोई ना कोई लोकल कार्मिक होता है, कोई टीचर होता है या कोई स्थानीय निकाय का कोई कर्मचारी होता है, प्लीज उसके साथ थोड़ा सा समय निकालकर, ये देश के महत्व का कार्य है, इसमें थोड़ा सा आपको समय लगेगा, बट आप ये प्रश्नों का उत्तर जरूर दें। कहीं पे भी कोई रेजिस्टेंस नहीं आया, तो प्रीटेस्ट की हमारी लर्निंग्स बहुत अच्छी थी। कुछ एप्स में जो छोटी छोटी डिफिकल्टीज हमारे प्रगणक और सुपरवाइजर्स को आ रही थी उनको इम्प्रूव किया गया। आज की तारीख में जो ऐप है वो बहुत ही सुगम और सरल ऐप है।
1: ये शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, अनियमित कॉलोनियां होती हैं और अस्थायी निवासी हैं, उनकी गणना को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
0: मैं आपके प्रश्न को दो भाग में बांटना चाहूंगी। एक तो है झुग्गी झोपड़ी और बस्तियां जो अनियमित रहती हैं, ये शहरी क्षेत्रों में विशेष रूप से ये समस्या है, तो इसके लिए एक अलग गाइडलाइन है भारत के महारजिस्ट्रार कार्यालय द्वारा। स्लम ब्लॉक, जब हम अपना गणना ब्लॉक बनाते हैं तो ऐसी स्लम्स जो कि अनियमित क्षेत्र हैं उनको अलग बनाना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें विकास की ज्यादा आवश्यकता है। तो स्लम ब्लॉक्स के गाइडलाइंस थोड़ा सा अलग होते हैं हमारे नॉर्मल गणना ब्लॉक से। हम ऐसा नहीं करते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग के साथ एक स्लम है तो दोनों को एक साथ मिला दिया और फिर ऐसा लगेगा कि आपके इंडिकेटर बहुत बढ़िया है। तो स्लम ब्लॉक को हमेशा अलग से रखा जाता है, स्लम ब्लॉक की अलग से काउंटिंग की जाती है। मैं बताना चाहूंगी कि 2011 में जैसे प्रदेश में 10,000 स्लम ब्लॉक अलग से चिन्हांकित किए गए थे और फिर उनको धीरे धीरे विकसित करते हैं विभिन्न योजनाओं के माध्यम से। आपके प्रश्न का दूसरा भाग ये था कि ऐसी बहुत सारी ट्रांजिटरी पॉपुलेशन रहती है या ये कह लीजिए कि बेघर जो हमारे लोग होते हैं। अभी हम घरों की गणना कर रहे हैं तो बेघर फर्स्ट फेज में नहीं काउंट किए जाते हैं, बट सेकेंड फेज में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति की गणना करते हैं। तो ऐसे बेघर लोग आखिरी दिन, जो सेंसस का आखिरी दिन होता है 28 फरवरी को शाम के 5 बजे के बाद, जो जहां पाया जाता है, रोड पर, स्टेशन के बाहर, पार्क में, फुटपाथ पे, ऐसे बेघर लोग जो जहां निवास कर रहे होते हैं शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, उनकी भी गणना की जाती है और यह भी आकलन किया जाता है कि ऐसे कितने लोग पाए गए जो कि बिना किसी घर के, बिना किसी आवास के खुले में सो रहे थे। तो दोनों ही व्यवस्थाएं ऑलरेडी जनगणना का पार्ट है जिसमें सभी को कवर किया जाता है।
1: ये जो डेटा संकलन हो रहा है तो नागरिकों की डेटा की गोपनीयता और साइबर सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है?
0: पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि सेंसस एक्ट में ही गोपनीयता का प्रोविजन है, वो निहित है। एक बार जब प्रश्नावली भर दिया जाता है तो वो गोपनीय हो जाता है और वो इतना गोपनीय समझा जाता है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी उस डेटा को शेयर नहीं करते हैं। सेंसस हमेशा एक स्टेटिस्टिक जनरेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, सेंसस आपको ये बता सकता है कि एक राजस्व ग्राम है उसमें ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास जल की सुविधा उपलब्ध नहीं है या शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बट सेंसस आपको कभी ये नहीं बताता है कि वो कौन से परिवार हैं और उनका नाम क्या है। तो सेंसस इज अ स्टेटिस्टिक एक्सरसाइज, वो आपको स्टेटिस्टिक्स जनरेट करके दे देता है। जो डेटा आप अपने एन्यूमरेटर को बताते हैं वो हमेशा गोपनीय रहता है। जब हम अपने चार्ज ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करते हैं, अर्थात तहसीलदार और हमारे नगर निकाय के अधिशासी अधिकारी जिनको ये कार्य फील्ड पर कराना है, उनको बार बार ये बताया जाता है कि किसी

0: भी दशा में किसी के भी पूछने पर आप प्रगणक से भी नहीं पूछोगे, और आपको भी यदि किसी स्रोत से कोई ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो आप किसी को ये नहीं बताते हैं कि डेटा क्या है या उस व्यक्ति ने क्या रिस्पॉन्स दिया। यही प्रगणक की भी मुख्य भूमिका है, ये हमारे चार्ज ऑफिसर की भी मुख्य भूमिका है, और ऐसा करना तो एक्ट का वायलेशन भी है, इस पे कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है, परंतु ऐसा कभी हुआ नहीं है भारत की हिस्ट्री में। और वो जो हमारी प्रश्नावली भरी जाती है वो एकदम कॉन्फिडेंशियल होती है, वो कभी किसी के साथ शेयर नहीं की जाती है।
1: गलत और फर्जी जानकारी को रोकने के लिए किस तरह के कदम उठाए जाते हैं? और मान लीजिए किसी से कुछ गलत जानकारी दे दी गई, तो उसको सुधारने का क्या ऑप्शन होता है?
0: सेंसस में हम गलत और सही के अर्थ पर नहीं जाते हैं, बिकॉज हम ये मानते हैं कि जो परिवार हमें बता रहा है वो सही बता रहा है, तो हम उसको कभी प्रूव करने को नहीं कहते हैं। गलत हो सकता है कि परिवार झूठ बोले आपसे, तो एन्यूमरेटर को थोड़ा ट्रेन किया जाता है कि सामने शौचालय बना हुआ, परिवार कह रहा है हमारे पास शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो एन्यूमरेटर पूछेगा कि ये किस स्कीम में मिला, किस कार्य में आता है, क्या आप इसको यूज नहीं करते हैं। तो एन्यूमरेटर की ट्रेनिंग का पार्ट होता है कि वो जहां तक हो सके, संभव हो सके, उत्तरदाता को ये समझाए कि आपको एकदम ही आंसर देना है और आप जो कह रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। और सेंसस वन टाइम प्रोसीजर है, एक बार आपने अपना रिस्पांस फ्रीज करा दिया, आपने जो भी उत्तर दिया उसको एक बार प्रश्नावली में भर लिया गया, तो वो प्रश्नावली फिर कॉन्फिडेंशियल हो गई। तो ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि आप बाद में जाकर अपने किसी आंसर को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप जो कह रहे हैं हमारे लिए वही सच, तो हम सही और गलत के मानक पे नहीं जाते हैं।
1: जी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और विविधता वाले राज्य में जनगणना की सबसे बड़ी चुनौतियां क्या देखती हैं आप?
0: उत्तर प्रदेश बहुत व्यापक हमारा प्रदेश है, बहुत अधिक हमारी जनसंख्या भी है, वो हमारा सबसे बड़ा एसेट भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। हमारे पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। सबसे पहली चुनौती जो पूरा देश को लगता है और उत्तर प्रदेश में हमारे सामने है, वो है कवरेज, कि इतने अधिक क्षेत्रफल में प्रत्येक घर तक पहुंच पाना, ये सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति ना छूटे। इसके लिए जिला प्रशासन के सामने हमारे चार्ज ऑफिसर जो तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, और हमारे सामने भी निदेशालय के रूप में सबसे बड़ी जो पहली चुनौती है वो है कवरेज। फिर दूसरी चुनौती आती है कि आपको 5.5 लाख कार्मिक चाहिए, और ये एक दिन की ड्यूटी नहीं है या 2 दिन की ड्यूटी नहीं है इलेक्शन की तरह, ये एक 30 दिन की प्रक्रिया है और आपकी ट्रेनिंग भी 3 दिन की होती है, तो ये एक लंबा प्रोसेस है। तो जो कार्मिक हो कम से कम वो मनोयोग के साथ पूरा लगा रहे इस ड्यूटी में और उसको अच्छे से कंप्लीट करे, तो ऐसा डेटाबेस बना पाना भी हमारे लिए, खासकर जो हमारा दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है वहां आबादी बहुत अधिक है परंतु उतने कार्मिक नहीं है, तो हमें कार्मिकों के लिए आसपास से भी आवश्यकता पड़ती है कि हम लोग अन्य जनपदों से भी उनकी सर्विसेज प्राप्त करें। तीसरी हमारी सबसे बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश का जो शहरी क्षेत्र है वो बढ़ता जा रहा है, और शहरी क्षेत्र की समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों से एकदम अलग होती है। शहरी क्षेत्र की समस्याएं, जैसे मैं एक बताना चाहूंगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग, और वो पूरा दिन घर पे नहीं रहते हैं, और एन्यूमरेटर आया, वो बार बार आया अपने एक माह के अवधि के दौरान, और आप उसको घर पर नहीं मिले, और फिर बाद में शिकायत भी होती है कि हमारे यहाँ एन्यूमरेटर नहीं आया, क्योंकि हमारे यहाँ प्रगणक आया नहीं और उसने हमारा डेटा संग्रहण नहीं किया। ये हमारी मुख्य कुछ चुनौतियां। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं स्वयंगणना का भी प्रावधान किया गया है कि आप घर से कम डेटा भर दें और एक एन्यूमरेटर का आपके पास लोकल एरिया में जो भी उसका फोन नंबर प्राप्त कर लें, या जो भी आप उससे एक समय पर मिलकर उसको कम से कम अपनी प्रश्नावली कंप्लीट करा दें। तो ये कुछ चुनौतियां हैं हमारे सामने। सबसे बड़ी चुनौती है कवरेज, नॉट जस्ट ज्योग्राफिकल बट हर व्यक्ति तक पहुंचना, हर स्थान तक पहुंचना। बट मुझे पूरी आशा है इस बार जिस प्रकार की गहन तैयारी हम लोग के जिलाधिकारियों ने की है उसके बाद ये चुनौती नहीं रहनी चाहिए, और हमारे पास बहुत सारे डिजिटल साधन है। जैसा मैंने आपको बताया कि हम सभी गणना ब्लॉकों का गठन डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं, अर्थात हम गूगल मैप जैसे एक्चुअल मैप के ऊपर उसका गठन कर रहे हैं, तो उससे हम बहुत आसानी से देख सकते हैं कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कोई भी प्रगणक को वो क्षेत्र आवंटित नहीं है और जहां पर शायद हमारी जनसंख्या छूट सकती है। तो सभी चीजों के क्रॉस चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं।
1: जी, क्या जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है और इसके कानूनी पहलू क्या हैं?
0: बिल्कुल, जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है। एक अपील भी जारी की गई है प्रदेश सरकार द्वारा कि सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। जब प्रगणक आपके घर आता है उसको ये वैधानिक अधिकार है कि वो आपके घर आए और वो आपसे प्रश्न पूछे, और आपका ये वैधानिक दायित्व है कि आप उसको सही उत्तर दें। ये सभी कुछ हमारा जो सेंसस एक्ट 1948 है उसमें निर्धारित है कि वो आपसे प्रश्न पूछने के लिए आपके घर आएगा, आप उसको मना नहीं करेंगे और आप उसको उत्तर देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि हम जनगणना में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जनगणना ऐसी एक प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को पार्टिसिपेट करना है, और ये भी अपेक्षित है कि प्रत्येक व्यक्ति को सही उत्तर देने हैं।
1: अगर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो कोई कानून भी है जिसमें कुछ ये कहता है कि नहीं, इनको पार्टिसिपेट करना ही है?
0: सेंसस एक्ट 1948 में ये निर्धारित है कि प्रगणक आपके घर आएगा और आप उसको उत्तर देंगे, यदि आप नहीं देते हैं तो आप एक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, आपके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सके।
1: आम जनता को जनगणना में भाग लेने के लिए किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
0: वर्तमान में तो हम लोग अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग उससे जुड़े, क्योंकि घर घर तक ये बात

0: पहुंचानी है, हमारे पोस्टर, बैनर, टीवी कैंपेन ये सब तो चल ही रहे हैं, न्यूज़पेपर्स में भी बार बार हमारा एडवर्टाइजमेंट आता रहेगा कि आपकी ये तिथियां हैं। बहुत सारे हो सकता है जनप्रतिनिधि भी अपील करें, बट घर घर तक कहीं ना कहीं ये बात पहुंचने की आवश्यकता है। तो हमने जैसे बताया प्रयागराज में उन्होंने कूड़ा गाड़ी के माध्यम से अनाउंस करवाया। हमारा ये भी प्लान है कि शहरों में RWA के माध्यम से, क्योंकि RWA सभी जगह जहां पे जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है उनका व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके माध्यम से जो पढ़ी लिखी जनता है उन तक ये बात पहुंचाई जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में हमने ये कार्य मुख्य विकास अधिकारी को दिया है कि वो जिला पंचायती राज अधिकारी के माध्यम से प्रत्येक ग्राम के प्रधान के माध्यम से ये अपील जारी कराएं और ये सुनिश्चित कराएं कि प्रत्येक घर तक हमारा प्रगणक पहुंचे और प्रत्येक घर उसको उत्तर दे। तो हमारा दो स्तर का कैंपेन है, एक रूरल कैंपेन जो कि प्रधानों के माध्यम से और ग्रामीण जो हमारे कार्मिक तैनात होंगे ग्रामीण क्षेत्रों में उनके माध्यम से होगा, और शहरी क्षेत्रों में क्योंकि चुनौती अधिक होती है तो मीडिया कैंपेन तो है ही, उसके साथ साथ हम ये भी चाह रहे हैं कि स्वगणना अधिक से अधिक लोग करें, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में लोगों के पास बहुत बार समय नहीं होता कि वो क्वेश्चनेयर भरने के लिए आधा घंटा दे पाए। तो स्वगणना का विकल्प यूज कर सकते हैं और अपने एन्यूमरेटर को अपना ID शेयर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश विकास प्राधिकरणों द्वारा, नगर निगमों द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि सभी कॉलोनीज में जब हमारी जनगणना चलेगी तो बार बार अनाउंसमेंट कराई जाएगी, वहां के एन्यूमरेटर का नंबर शेयर किया जाएगा कि यदि कोई घर किसी भी कारण से छूट जाता है पहले 10-15 दिन में तो वो जरूर से अपने प्रगणक से संपर्क स्थापित करके अपनी प्रश्नावली कंप्लीट कर ले।
1: जनगणना के आंकड़े नीतियों को बनाने में अहम भूमिका रखते हैं, ऐसे में आप प्रदेश की जनता से क्या अपील करेंगी?
0: मेरी उत्तर प्रदेश के निवासियों से ये अपील है कि प्रशासन पूरे प्रयास कर रहा है कि वो हर घर तक पहुंचे। अब जनता का भी कहीं ना कहीं दायित्व है कि वो अपने प्रगणक को सही उत्तर दे, उत्तर अवश्य दे। और आप यदि किसी भी कारणवश आप अपने प्रगणक तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो प्लीज अपने जनप्रतिनिधि, अपने स्थानीय अधिकारी के माध्यम से अपने प्रगणक तक पहुंचे। और मेरी अपील है आप सभी लोग जनगणना में पार्टिसिपेट करें।
1: निश्चित रूप से जनता पूरे उत्साह के साथ जनगणना में हिस्सा लेगी और प्रगणकों को पूरा सहयोग करेगी। आकाशवाणी समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच ओम जी।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे प्रदेश में जनगणना के पहले चरण की तैयारियों पर प्रदेश के जनगणना कार्य निदेशक और मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी समाचार संवाददाता ओम अवस्थी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अभी आप सुन रहे थे सामयिक चर्चा।
4: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाल गोपाल। आज के कार्यक्रम को पेश कर रही हैं फरहा खान।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
2: हमारे स्टूडियो में आज आप सभी का स्वागत है और हर बार की तरह इस बार भी बाल गोपाल कार्यक्रम में आप प्यारे प्यारे बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं नई नई बातें, जानकारियाँ और ढेर सारा मनोरंजन। बच्चों मैं हूँ आपके साथ फरहा, तो चलिए करते हैं आपसे कुछ मस्ती भरी बातें। बच्चों आज आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
3: दीदी आज हम आपको पोयम, कविता, गीत, चुटकुले ये सब सुनाने वाले हैं।
2: अच्छा तो सबसे पहले कौन आएगा?
4: मैं दीदी।
2: नाम बताइए अपना।
4: देव।
2: क्या सुनाने वाले हो?
4: पोयम।
2: सुनाइए।
4: आसमान की सौंपाई ऊपर से नीचे उतरी, नए नए उपास रखा, सपनों का संसार बनाकर खेल खिलौने और मिठाई सब बच्चों को देने आई। दीदी मेरे को एक और पोयम सुनानी है।
2: चलिए सुनाइए।
4: तेज निराला हिम्मत वाला, लंबी लंबी ऊंचे वाला, तेज नुकीले दांतों वाला, सबका दिल दहलाने वाला, करो करो तो देर, भागो भागो आया से।
3: दीदी अब मैं सुनाऊंगी।
2: अपना नाम बताइए।
3: गुनगुन।
2: क्या सुनाओगी गुनगुन?
3: एक पोयम।
2: सुनाइए।
3: गर्मी आई, गर्मी आई, घर घर में है पंखा, लाए सबको पास बुलाता, पंखा मीठी नींद सुलाता, पंखा ठंडी हवा खिलाता, पंखा गर्मी दूर भगाता, पंखा। दीदी एक और सुनाऊंगी मैं।
2: अभी एक और सुनाएंगी आप?
3: जी दीदी।
2: सुनाइए।
3: डब्बू जी की तोंद बड़ी, चींटी उस पर एक

0: शोर मचाया डब्बू राम, चींटी नीचे गिरी धड़ाम, फूट गया चींटी का सर, डब्बू भाग गया डर कर।
1: बच्चों हमारे स्टूडियो में बहुत छोटी सी बच्ची आई हुई है, अपना नाम बताइए। आपका नाम क्या है?
2: लवी।
1: क्या सुनाओगी?
2: पोयम।
1: सुनाइए।
2: सालाची ने केला खाया, केला खाकर मुंह फिर खाया, सालाची के लिए थला मुंह से निकला है राम।
1: तो चलिए अब हमें सुनाने के लिए कौन आने वाला है?
3: हम।
1: अरे अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम है फहद।
1: फहद, आप हमें क्या सुनाने वाले हैं?
3: मैं आपको सुनाऊंगा पोयम।
1: चलिए सुनाइए।
3: जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, टेलिंग लाइन नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा।
1: कौन आने वाला है? क्या नाम है आपका?
4: मोनिका।
1: क्या सुनाने वाली हो?
4: कविता।
1: सुनाइए।
4: दे

0: देता है सब कुछ, हम भी कुछ देना सीखें, हम भी कुछ देना सीखें।
1: अब कौन आने वाला है हमें सुनाने के लिए?
2: आशीष।
1: क्या सुनाने वाले हैं?
2: कविता।
1: सुनाइए।
2: गर्मी में खाने को मैंने फिर से सेब निकाला, गिरते गिरते बचा हाथ से, झट से मैंने उसे संभाला। बाहर आते ही गर्मी से हुआ बहुत बेहाल, बोलो भैया नहीं उतारो मेरी नाजुक खाल। घबराहट से सिसक पड़ा वह, लगा कांपने थर थर, आंसू से भर रोया बेचारा हुआ पसीने से तर।
1: और अब कौन आने वाला है?
3: सोनाक्षी।
1: सोनाक्षी, क्या सुनाओगी आप हमें?
3: कविता।
1: सुनाइए।
3: मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी, सारा पानी पी जाएगी।
1: और अब कौन आ रहा है?
4: दीदी मैं सुनाऊं?
1: अपना नाम बताइए।
4: दीदी मेरा नाम रिया है।
1: रिया, क्या सुनाओगी आप हमें?
4: एक कविता सुनानी है।
1: सुनाइए।
4: तितली उड़ी बस में चढ़ी, बस में उसको सीट न मिली, ड्राइवर बोला आजा मेरे पास, तितली बोली हट बदमाश।
1: अरे वाह, आज रिया ने तो बहुत ही अच्छी कविता सुनाई।
4: दीदी दीदी एक पहेली मैं भी पूछूंगी।
1: अपना नाम बताइए।
4: दीदी मेरा नाम अनु।
1: पूछिए।
4: एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पे पैसा।
1: बच्चों मुझे तो इसका आंसर पता है, क्या आपको पता है इसका आंसर?
5: हाँ।
1: नाम बताइए अपना।
5: माय नेम इज प्रतीक्षा गौतम।
1: बताइए क्या है इसका आंसर?
3: मोर।
1: मोर, वेरी गुड। बच्चों अब आपको सौम्या एक पोएम सुनाएंगी।
3: टिंकल टिंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अब वर्षा वर्षो हाई, लाइक ए डायमंड इन द स्काई।
1: सौम्या ने तो बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। और अब कौन आएगा?
6: दीदी मैं।
1: मैं अपना नाम तो बताइए, आपका नाम क्या है?
6: मेरा नाम अदनान है।
1: अदनान, क्या सुनाने वाले हैं?
6: कविता।
1: सुनाइए।
6: माँ परिया कैसी होती हैं, माँ बोली सुंदर होती हैं, दो पंखों वाली होती हैं, प्यारी बेटी सी होती हैं, कभी कभी नीचे है आती, बच्चों के संग गाना गाती, कभी मिठाई लेकर आती, कभी खिलौने देकर जाती, मैंने कहा बुलाओ माँ, मुझको भी दे जाएं माँ, मांगू मैं उनसे क्या क्या, ज्ञान मुझे दे जाए माँ, आओ परियां जो मैं मांगू वह दे जाओ, तुम्हें बुलाऊं तब तुम आओ, मुझको खुशियां देकर जाओ।
1: बच्चों सोनाक्षी अब आप सभी को एक बहुत सुंदर भजन सुनाने वाली हैं, आप तैयार हैं?
4: जी दीदी।
1: चलिए सुनाइए।
3: यस।

0: चलिए बच्चों, मस्ती तो बहुत हो गई, अब करते हैं कुछ काम की बातें।
1: बच्चों, आप जानते ही हैं, अब बहुत जोर की गर्मी पड़ने लगी है। बड़े बुजुर्ग हर कोई गर्मी से परेशान है। ऐसे में बच्चों, आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिससे आप गर्मी में बीमार ना पड़े, क्योंकि गर्मी में हमारे शरीर को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसीलिए बच्चों, जितना हो सके आप सभी को गर्मी से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बच्चों, अक्सर आप तेज धूप से जब घर आते हैं तो आपको प्यास बहुत लगती है और आप तुरंत ठंडा ठंडा पानी पी जाते हैं। तो बच्चों, आपको घर से आकर ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर रुक कर आराम से थोड़ा थोड़ा कर आपको पानी पीना चाहिए। यदि आप एसी में बैठे हुए हैं तो एसी से तुरंत बाहर नहीं जाना चाहिए और धूप से तुरंत एसी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बच्चों, ऐसे में आपके शरीर का तापमान अधिक बढ़ जाता है और आप उल्टी, हैजा, डायरिया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। वैसे बच्चों, आप सभी तो जानते होंगे कि अब गर्मी का मौसम है तो आम भी आने वाले हैं। गर्मी के मौसम में आम आते हैं और सब बच्चे आम खाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आम बच्चों को बहुत पसंद होते हैं और आम मुझे भी बहुत पसंद है। तो बच्चों, आम, तरबूज, खरबूज जैसे मौसमी फलों को खूब खाएं और इन फलों को खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। थोड़ी देर बाद थोड़ा थोड़ा पानी पिएं और लू, धूप आदि चीजों से बचने के लिए हरी मिर्च, पुदीना, प्याज, आम का पना, ग्लूकोज आदि चीजों को अपनी डाइट में शामिल करें और कोशिश करें कि गर्मियों में हल्के या सफेद रंग के कपड़े पहने। इससे हमें गर्मी भी कम लगती है और ये देखने में अच्छे लगते हैं। घर से निकलने से पहले पूरे अंगों को ढकने वाले कपड़े पहने और कम से कम घर से बाहर निकले और साथ ही नींबू, बेल, खस आदि शरबतों का आनंद लें।
0: चलिए बच्चों, अब हम आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।

उगते लगता कैसा भोला। बच्चों सूरज के बारे में बता रहे हैं हम। उगते लगता कैसा भोला, बनता वही आग का गोला। बरसाता है फिर अंगारे, हम तपते गर्मी के मारे, लेकिन यह

मानसून सागर से लाता, क्या लाता है सूरज? मानसून सागर से लाता, लाकर धरती पर बरसाता। वर्षा से हो खेती क्यारी, उगती फसलें।

बातें, हम फिर झूला झूला करते, मस्त फुहारे झरने झरते, मस्त फुहारे झरने झरते। उसके बाद में फिर वर्षा आती है, वर्षा गई आ गई सर्दी, सूरज ने भी बदली वर्दी, सर्दी में लगता है प्यारा, सुख पाता मन तभी हमारा। बैठ धूप में बच्चे पढ़ते, बूढ़े बिछा खाट आ पढ़ते, बैठ धूप में बच्चे पढ़ते, बूढ़े बिछा खाट आ पढ़ते।

0: कूलर चलते, सर्दी में पर हीटर चलते, सर्दी में पर हीटर जलते। और बच्चों, हमको सदा सहारा देता, बदले में कुछ कभी न लेता, इसको कहते हैं भगवान, देता रहता है वरदान।
1: प्यारे बच्चों, अभी आपने ये गीत सुना। बच्चों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि मातृ दिवस हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। यह दिन पूरी तरह से हमारी माताओं को समर्पित है। दुनिया में माँ का स्थान सबसे ऊंचा होता है और यह दिन उन्हें शुक्रिया कहने का एक खास मौका है। एक माँ अपने बच्चों के लिए निस्वार्थ प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति होती है। वह बिना किसी शिकायत के दिन रात अपने परिवार की देखभाल करती है। माँ हमारे जीवन की पहली गुरु होती है, जो हमें सही और गलत में फर्क समझाती है। बच्चों, हमें मदर्स डे कैसे मनाना चाहिए? अपनी माँ को एक प्यारा सा कार्ड या उपहार देकर या उनकी पसंद का खाना बनाकर पूरे दिन के कामों में उनकी मदद करें, ताकि उन्हें आराम मिल सके। और सबसे ज़रूरी, उनके साथ थोड़ा समय बिताएं और उन्हें बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। वैसे तो माँ के प्रति सम्मान दिखाने के लिए किसी एक दिन की जरूरत नहीं है, लेकिन मातृ दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हम अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकालकर अपनी माँ को खास महसूस कराएं। माँ की खुशी ही एक बच्चे की सबसे बड़ी सफलता है। बच्चों, माँ के बिना घर अधूरा है और माँ का प्यार ही दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ अब हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। वार्ता है मदर्स डे। वार्ताकार हैं आभा पांडे।
2: मम्मा, हमारे टिफिन में आज क्या रखा है? बर्गर बनाए हैं ना? हमने कल ही कह दिया था आपसे कि आज हम लंच बॉक्स में बर्गर ही ले जाएंगे। ईशु और विशु की फरमाइश के उत्तर में रिद्धिमा का झुंझलाता हुआ आवाज आया। क्या रखा है मेरा सर? रोज रोज तुम्हारी नई नई मांगे पूरी करूं या घर देखूं? जाओ, आलू का पराठा ही लेकर जाओ। कहते हुए रिद्धिमा ने लंच बॉक्स ईशु विशु के बैग में लगभग ठूस ही दिए। बच्चों की फरमाइशों को सर्वोपरि समझने वाली रिद्धिमा आज इतना झुंझला क्यों रही है? जानता है शिवम, दरअसल आज जीवन चाचा माँ को दिल्ली लेकर आ रहे हैं। 3.5 कमरों के फ्लैट में माँ को कहाँ एडजस्ट किया जाए, यही सोचकर टेंशन में है रिद्धिमा। एक कमरा ड्राइंग रूम के रूप में उपयोग होता है, तो दूसरा उनका बेडरूम है और तीसरा कमरा जाहिर है ईशु विशु के धमाचौकड़ी और शरारतों का केंद्र है। फिर 6x8 का स्टोर तो स्टोर ही है, घर गृहस्थी की सारी जरूरी और गैर जरूरी सामानों का शरण स्थल। ऐसे में माँ को कौन सा कमरा दिया जाए, यही अब तक निश्चित नहीं कर पाई है रिद्धिमा। शिवम को याद आने लगा कैसे चाव से माँ ने उसके हाईस्कूल में आने पर उसकी पढ़ाई के लिए अलग कमरा बनवाया था। कहाँ उसकी पढ़ने की मेज होगी, कहाँ किताबों का रैक होगा, कैसा डिजाइन होगा उसका। माँ बेटी घंटों इसी पर चर्चा करते और फिर कहीं जाकर गाँव के बढ़ई को उसे बनाने का ऑर्डर दिया जाता। 15 साल की किशोरावस्था में जहाँ मेरा अपना कमरा जैसी अनुभूति उसे रोमांचित कर जाती थी, वहीं माँ के उत्साह की भी जैसे सीमा न थी। माँ नहीं चाहती थी कि उनके लायक बेटे के कमरे में कहीं कोई भी कमी रह जाए। सारा फर्नीचर

शीशम की लकड़ी का ही होगा, एकदम फर्स्ट क्लास, जिद थी माँ की। पिताजी तो मिलिट्री में थे और साल में एक महीने की छुट्टी में ही घर आते थे। उसमें भी उनका ज्यादातर समय गांव की चौपाल और दोस्तों के बीच ही बीतता था। उन्हें तो शायद ये याद भी नहीं होगा कि शिवम इस बार 10वीं की बोर्ड की परीक्षा देगा। सोचकर हंसी आती है कि बचपन में कई साल तक तो वो अपने पिता को मेहमान ही समझता रहा, पर माँ तो हर मोड़ पर, हर पल, हर कदम पर उसके साथ थी। इंटरमीडिएट पास करते ही पिताजी तो उसे आर्मी में ले जाने के पक्ष में थे, पर ये माँ ही थी जो चट्टान की तरह अडिग होकर खड़ी थी कि शिवम अपनी इच्छानुसार शहर जाकर आगे पढ़ेगा, अच्छे कॉलेज में एडमिशन, फीस, हॉस्टल का खर्चा। पिताजी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, पर माँ के चेहरे पर शिवम ने कभी परेशानी नहीं देखी। शिवम को आगे बढ़ता देखना ही जैसे उनकी जिंदगी का मकसद था, और उसे पूरा होते देख वे आत्मसंतुष्टि के भाव से भरी रहती। शिवम छुट्टियों में जब भी गांव जाता, तब जब तक माँ की गोद में सर रख कर लेट ना लेता, उसे चैन ही नहीं पड़ता। अंदर से ममत्व और आनंद से भरी हुई माँ उसे ऊपर से झिड़कती, चल चल, क्या कर रहा है? बीएससी कर रहा है, पर लाड़ बच्चों जैसा। कल को तेरी शादी होगी तो बहू कहेगी, पता नहीं किस नन्हे मुन्ने से मेरी शादी हुई है। अरे नहीं, मेरी शादी होगी तो मैं और आपकी बहू दोनों ही आपकी गोद में लेटा करेंगे, हंसकर कहता शिवम। पर युवावस्था की कल्पनाओं की यो ओस बिंदु जीवन की तप्त राहों पर कब भाप भरकर उड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। ग्रेजुएशन के बाद शिवम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद उसे बैंक में अधिकारी के रूप में नियुक्ति मिल गई। पहली पोस्टिंग कानपुर के पास मिली तो माँ ने ही गाँव से आकर उसके किराए के मकान को व्यवस्थित किया। प्रमोशन के बाद दिल्ली आने पर बैंक के काम के सिलसिले में रिधिमा के व्यवसायी पिता से मुलाकात हुई और महानगर की चकाचौंध से अछूता ये संस्कारी लड़का उन्हें अपनी बेटी के लिए भा गए। उनके आमंत्रण पर उनके घर जाने पर रिधिमा से मुलाकात हुई। रिधिमा का सौंदर्य, उसका आत्मविश्वास किसी को भी प्रभावित करने में सक्षम था, फिर भला सीधा साधा शिवम प्रभावित कैसे ना होता। शादी के बाद गांव पहुंचने पर माँ रिधिमा को देखकर ही निहाल हो गई, पर जन्म से ही दिल्ली में पली बड़ी रिधिमा का मूड गांव पहुंचकर उखड़ गया। रही सही कसर शादी के बाद की जाने वाली रस्मों ने पूरी कर दी। 5 दिन गांव में जैसे एक एक घंटा बल्कि एक एक पल गिनकर काटे उसने। उसके बाद तो उसने गांव के नाम से हाथ ही जोड़ लिए। बाद में 2-3 बार शिवम माँ को जिद करके दिल्ली लाया भी तो माँ एकाध सप्ताह ही वहां रहकर वापस लौट गई। इसके लिए जहां दिल्ली का प्रदूषित वातावरण जिम्मेदार था, तो वहीं दूसरी ओर घर का मिलिट्री जैसा अनुशासन में बंधा वातावरण भी कम जिम्मेदार न था। लेकिन इस बार बात कुछ और है। जीवन भर अपने परिश्रम और उत्साह से लोगों को पटखनी देने वाली माँ लगभग 1 महीने से बुखार से पीड़ित हैं। पड़ोस के जीवन चाचा ने पहले तो उन्हें गांव के डॉक्टर को ही दिखाया, पर फायदा न होने पर पास के कस्बे में ब्लड टेस्ट वगैरह कराए गए, जिससे पता चला कि माँ को टाइफाइड है। उनका सही इलाज उनके बेटे के पास दिल्ली में हो सकेगा, ये सोचकर ही आज जीवन चाचा माँ को यहाँ ला रहे हैं। अचानक रिधिमा की आवाज से शिवम के विचारों की श्रृंखला टूटी। वो कह रही थी, सुनिए ऐसा करते हैं, स्टोर में ही माँ की चरपाई डलवा देते हैं, इतनी जगह तो है ही, उसमें उसका सामान किसी भी तरह किचन में एडजस्ट कर लेंगे और बाकी सामान टेरिस पे रख देंगे, ठीक है ना? जानता है कि रिधिमा सलाह नहीं दे रही उससे बल्कि ऑर्डर दे रही है, फिर भी शिवम के मुंह से निकल ही गया, लेकिन स्टोर तो छोटा सा है और उसमें एक छोटी सी ही खिड़की है, माँ को परेशानी नहीं होगी। पर और चारा ही क्या है इसके अलावा? बड़ा सा फ्लैट तो खरीद नहीं सकते आप? रिधिमा की बात सुनकर कट कर रह गया शिवम। जब भी मौका मिलता है छोटे फ्लैट को लेकर ताना दे ही देती है रिधिमा। अब उसके बिजनेसमैन पापा की तरह बड़ा घर लेना तो संभव नहीं है उसके लिए, पर पता नहीं क्या बात है कि रिधिमा की गलत बात का प्रतिवाद चाहकर भी नहीं कर पाता शिवम। शायद गांव की पृष्ठभूमि के कारण दिल्ली निवासी मॉडर्न रिधिमा उसे अपने से कमतर समझती है, और यही हीन भावना, ये संकोच उसे रिधिमा के सामने अपनी सही बात भी नहीं रखती। शाम होते होते माँ आ गई। महीने भर के बुखार ने जैसे तोड़ दिया था उसे। कितनी कमजोर, कितनी निरीह लग रही थी वो। शिवम का मन भर आया। चाय नाश्ता करके जीवन चाचा तो गांव वापस लौट गए, पर माँ इशू बिशू की बातों में उलझी वहीं बैठी रही। इशू बिशू की बातें जैसे खत्म होने पर ही नहीं आ रही थीं। खाना खाने के बाद जब सोने का समय हुआ तो माँ बोली, चल शिवम मेरा बिस्तर लगा दे, बहुत थकान हो रही है। स्टोर में बिछी चारपाई की ओर ले जाते हुए शिवम का मन संकोच और लज्जा से भर उठा, लेकिन रिधिमा ने बड़ी चतुराई से बात संभाल ली। माँ जी, आपके रहने का इंतजाम एकदम अलग एकांत में किया है जिससे आपके आराम में खलल ना पड़े, वरना इशू बिशू तो चैन भी न लेने देंगे आपको। स्टोर में बिछी चारपाई देखकर फीकी सी हंसी हंस दी माँ, ठीक है बहू, ठीक ही सोचा है तुमने। शिवम को याद आया कैसे उसके कमरे में चारों दिशाओं में खिड़कियां लगवाई थी माँ ने, ताकि हवा किसी भी दिशा से आए उनके बेटे को गर्मी न लगे।
अगली शाम जब शिवम ऑफिस से लौटा तो रिधिमा चाय रखते हुए

0: आज तो सर दर्द करने लगा मेरा। माची तो गांव की इतनी इतनी बातें बताती हैं कि बोर हो गई मैं तो। अब जिनसे न जान न पहचान, उनकी बातें कोई कब तक सुने। शिवम जानता है कि माँ को गांव के लोगों की, जो उनके परिवार की तरह ही हैं, याद सता रही है। पर रिधिमा भला ये कैसे समझ सकती है, वो तो एक बार के बाद दोबारा गाँव गई ही नहीं। अगले सप्ताह रिधिमा की शिकायत थी। पता नहीं कौन सी पुरानी पुरानी बातें लेकर बैठ जाती हैं माँ जी, कभी तुम्हारे पढ़ाई के दिनों की तो कभी बचपन की शैतानियों की। भले यीशु विशु क्या सोचते होंगे कि उनके पापा बचपन में कितने शैतान थे। मैंने तो उन्हें यही बताया है कि उनके पापा शुरू से ही बड़े डिसिप्लिन रहे। यही नहीं, रिधिमा को तो उसकी सहेलियों सारी फ्रेंड्स से भी माँ के बातचीत करने पर आपत्ति थी, क्योंकि माँ अपने खेतों की खलिहानों की बातें करती थी और रिधिमा की फ्रेंड्स गांव से संबंध रखने वाले व्यक्ति को गंवार समझती थी। माँ भी शायद ये सब समझ रही थी और धीरे धीरे वो अपने में ही सिमटती जा रही थी। उन्हें दिल्ली आए 1 महीना हो गया था और धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य में सुधार आ रहा था, पर पता नहीं क्यों पहले किसी चमक उनके चेहरे से नदारद थी। शाम को माँ को टेरेस पर चुपचाप बैठे देखता शिवम तो लगता दीन दुनिया से बेखबर कोई समाधिस्थ मूर्ति रखी हो। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी के बाद आज दूसरा शनिवार थे। वैसे हमेशा बच्चे पापा के घर होने पर नाश्ता साथ ही करते हैं और साथ में खूब मस्ती भी चलती है, पर आज पता नहीं क्यों यीशु बिशु के बोझ कुछ और ही खिचड़ी पक रही। पापा के घर होने पर भी दोनों अपने कमरे में घुसे हुए थे। कुछ समय बाद कमरे से बाहर आते भी तो पता नहीं क्या कुछ लेकर अंदर चले जाते और दरवाजा बंद कर लेते। नाश्ते पर तो डाइनिंग टेबल पर थे ही नहीं दोनों। दोपहर लंच के समय भी दोनों को बुलाना पड़ा। ये तो सरासर अनुशासन भंग करने का मामला था। रिधिमा का क्रोधित चेहरा देखकर आखिर शिवम को उन्हें बुलाने जाना पड़ा। पापा की आवाज सुनकर थोड़ा सा दरवाजा खोलकर दोनों उसके कान में फुसफुसाते हुए बोले, पापा आज मदर्स डे है ना, तो हम सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लीज मम्मी को कुछ मत बताना। शिवम को अंग्रेजों के ये चोचले कभी पसंद नहीं आते। आखिर माँ बेटों का स्नेह किसी एक खास दिन का प्रदर्शित करने की चीज तो है नहीं, ये तो हर दिन हर पल महसूस करने की बात है। पर बच्चों के उत्साह को देखते हुए उसने उनका दिल तोड़ना उचित न समझा। शाम होते यीशु विशु ने कमरे का दरवाजा नॉक करते हुए कहा, मामा जल्दी से आप लोग हमारे कमरे में चलो, एक सरप्राइज है आपके लिए। कमरे में पहुंचने पर समझ आया कि आखिर दिन भर किस काम में व्यस्त रहे दोनों बच्चे। कमरा बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। सामने की दीवार पर बच्चों ने रिधिमा का फोटो लगाया हुआ था जिसके नीचे लिखा हुआ था हैप्पी मदर्स डे। दोनों ने एक बड़ा सा ग्रीटिंग कार्ड भी बनाया हुआ था जिस पर माँ के त्याग पर कृतज्ञता ज्ञापित करती हुई कुछ पंक्तियां थी। मेज पर एक केक रखा हुआ था जिस पर अंकित था थैंक्स मदर। दोनों बच्चे दादी को भी यह कहते हुए पकड़ कर ले आए कि दादी के आने पर ही मम्मा केक काटेगी। अपने प्रति बच्चों का स्नेह देखकर रिधिमा तो जैसे बलिहारी हुई जा रही थी। लगता था बच्चों ने आयोजन में कुछ भी कमी न रखने की कसम खाई थी, क्योंकि ग्रीटिंग कार्ड और केक काटने पर ही कार्यक्रम की इतिश्री नहीं हुई, बल्कि इसके बाद एक बड़ा सा गिफ्ट पैक भी बच्चों ने रिधिमा को दिया। खोलने पर देखा तो पाया कि कार्डबोर्ड और थर्मोकोल की मदद से एक बहुत बड़ा सा प्यारा सा घर था उसमें। अरे बच्चों, इतनी मेहनत क्यों की तुम लोगों ने, इतना बड़ा घर बनाने की क्या जरूरत थी। सुनते ही बड़ी निश्चलता से बोल उठे बच्चे, मम्मा हमने ये बड़ा घर इसलिए बनाया है ताकि जब हम बड़े हों और आप बूढ़े हो जाएं तो आपको दादी माँ की तरह स्टोर में ना रहना पड़े, बल्कि आपके लिए भी तब एक अच्छा सा बड़ा सा कमरा हो इस घर में। सुनकर रिधिमा सन्न रह गई। बच्चे बड़ों के व्यवहार को देखते ही नहीं उसका सूक्ष्म निरीक्षण भी करते हैं, ये तो सोचा ही ना था उसने। यदि वो किसी का कल है तो उसका कल यानी भविष्य भी उसके सामने खड़ा है। उसके मन पर पड़ी धूल को बच्चों के निश्चल उपहार ने जैसे एक ही पल में साफ कर दिया। शिवम ने देखा रिधिमा माँ की चरपाई बच्चों के कमरे में लागती हुई कह रही थी, माँ आज से आप यहीं सोएंगी बच्चों के साथ, वहां आपको गर्मी लगती होगी। आपके साथ रहकर बच्चे अच्छी बातें और अच्छे संस्कार भी सीख पाएंगे। शिवम को लग रहा था जैसे अप्रत्यक्ष रूप से ही सही वो भी माँ को मदर्स डे का एक छोटा सा गिफ्ट दे सका है, उनका सम्मान, उनका उचित स्थान।
1: प्यारे बच्चों, अभी आपने सुनी ये वार्ता। वार्ता थी मदर्स डे, वार्ताकार थी आभा पांडे। अब घड़ी इशारा कर रही है आपसे विदा लेने का और हमारे कार्यक्रम का पता बताने का। तो जाते जाते बता देते हैं कार्यक्रम का पता। हमारा पता है बाल गोपाल कार्यक्रम द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी मथुरा, पिन 281003। बच्चों जय हिंद,
2: जय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल गोपाल। कार्यक्रम को पेश किया फरहा खान ने। श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। वनितालोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 11 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 2530135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 9412225575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के सभी श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 11 मई 2026 और समय होगा अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई।

0: FM 102.2 MHz पर ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं। आपको सुनवाते हैं ये परिचर्चा, भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार। इस परिचर्चा में प्रतिभाग कर रहे हैं प्रतिभा शर्मा, डॉक्टर अनीता गुप्ता और आपसे भेंट कर रहे हैं ओपी सिंह। आइए सुने ये परिचर्चा।
1: यो तो भारतीय संस्कृति में सारी दुनिया को ही एक परिवार की परिभाषा में या जद में रखा गया है। वसुधैव कुटुम्बकम हमारी प्राचीन उक्ति कहे, सूक्ति कहे, लेकिन जितना भी भारतीय समाज और सभ्यता में समाज में परिवार को लेकर जो रचना रही है वो ऐसी है जहां न सिर्फ संस्कारों की पाठशाला के रूप में उसको देखा गया है, बल्कि जीवन के जितने गुण हो सकते हैं उन सबके दायित्व और उत्तरदायित्व बोध के लिए परिवार हमारी पाठशाला के रूप में रहा है। वर्तमान संदर्भों में बहुत कुछ बदला है, अर्थ हमारे जीवन की केंद्र में हो गया है और इस अर्थ के अर्जन के लिए जो जीवन की थोड़ी सी भागदौड़ बढ़ी है उसमें कहीं ना कहीं परिवार की ये परिभाषा, परिवार की ये आधारशिला खिसक रही है। आज संयुक्त परिवारों से एक न्यूक्लियस परिवार की जद में हम लोग आ गए हैं। तो जो गुणों का विकास होता था, उत्तरदायित्वों का जो बोध होता था, जहां हम जी करके सीखते थे, वो परिस्थितियां कहीं ना कहीं हम पीछे छूटते जा रहे हैं। तो सामूहिक जो व्यवस्था परिवार की रही भारतीय समाज में, वो क्यों करके हमसे छूट रही है, उसके बिखरने के क्या कारण हो सकते हैं और उसके क्या परिणाम और प्रभाव हम अपने जीवन में झेल रहे हैं, और आगामी अगर हम समय की बात करें तो कहाँ जाएंगे हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भारतीय सामाजिक व्यवस्था के आधार के रूप में अगर हम परिवार की परिकल्पना करें तो आज की इस परिचर्चा में मेरे साथ हैं श्रीमती प्रतिभा शर्मा जी, जो सदस्य जिला विधिक प्राधिकरण मथुरा की। मैं आपका स्वागत करता हूं।
2: धन्यवाद।
1: साथ ही हमारी डॉक्टर अनीता गुप्ता जी, जो प्राचार्य हैं हुकुम सिंह एजुकेशनल स्कूल, एजुकेशनल कॉलेज कारब की। मैं आपका भी स्वागत करता हूं।

0: जैसा श्रोताओं से चर्चा हो रही थी भूमिका के तौर पर, मैडम मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो परिवारों का जो परिदृश्य आज आप देखती हैं, क्योंकि आप तो उस विधिक सेवा के प्राधिकरण की सदस्य भी हैं और आपके पास बहुत सारी चीजें चल करके आती हैं, तो अगर हम कारणों में जाना चाहें तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं हो सकता जिसके कॉस्ट पे या जिसके आधार पे हम परिवार को छोड़ने या विघटन के लिए आ जाएं। तो स्थितियां परिस्थितियां जो बदली हैं, क्या कुछ समाज में ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हुए हैं?
1: देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है, परिवार के टूटने की या बिखरने की बात हम करें तो प्राचीन व्यवस्थाओं से हम लोग अलग हट चुके हैं
0: जी।
1: प्राचीन व्यवस्था जो थी, जैसा आपने कहा, वसुधैव कुटुंबकम
0: जी,
1: जहां पूरे वसुधैव को कुटुंब मानकर रहा जाता था और पहले गांव, कुटुंब, मोहल्ले इन्हीं सब पर बना करते थे
0: जी।
1: जिसके आधार पर परिवार व्यवस्थाएं बनी और संयुक्त रूप से परिवार रहा करते थे, जहां दादा, नानी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, बुआ सब लोग संयुक्त रूप से रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, व्यवस्थाएं बदलती गई, प्रकृति में और सोच में परिवर्तन आया, तो परिवारों का भी स्वरूप बदलने लगा और एकल परिवारों का चलन होता गया। पहले क्या होता था, जब जैसे एक बहू है या बेटी है परिवार में है, वो कुछ भी गलत कर रही है या उससे भूल बस गलती हो रही है, तो चाची, ताई, दादी सभी उसको रास्ता दिखाने का प्रयास करते थे। और जब नववधू घर में आती थी, तो जब घर में घुसते थे तो दो संस्कार होते हैं हमारे यहाँ पे विवाह के दौरान। एक, ससुराल में जब दूल्हा जाता है तो उसका दरवाजा रोका जाता है, इसको हम हंसी मजाक में लेते हैं और केवल नेक तक लेते हैं, लेकिन इसके पीछे परिवार की बहुत बड़ी व्यवस्था थी कि वहां सालियां जीजा को ये कहने का प्रयास कर रही हैं कि आपसे कभी कोई गलती हो या मेरी बहन से कभी कोई गलती होगी और आप घर से बाहर निकलेंगे तो हम लोग दरवाजे पर आपको रोकने के लिए खड़े हैं, इसलिए दरवाजे रोकने की व्यवस्था की गई। और उसी तरीके से जब वधू घर में प्रवेश करती थी तो नंदों के द्वारा भी दरवाजे को रोका जाता था और भाई भाभी को घुसने के लिए हास परिहास में कि नेक दो तब हम आपको जाने देंगे। तो उसका भी जो हमारे वेदों में महत्व था वो यही था कि अगर हल्का फुल्का झगड़ा हो जाए तो वधू और लड़का घर से बाहर ना निकलें, तुम्हारी बहनें तुम्हें रोकने के लिए दरवाजे पर खड़ी मिलेंगी। लेकिन धीरे धीरे उन सब परंपराओं में परिवर्तन हो गया और उनको हमने हंसी मजाक में ले लिया और यही वजह है कि आज परिवार पूरी तरीके से विघटन की ओर है
0: जी। यानी आप ये कहना चाह रही है कि समाज का एक ढांचा ही नहीं था, वहां एक समाज की संचालन के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं थी, कुछ मान्यताएं थी, बल्कि उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं के माध्यम से एक नियंत्रण भी था कि समाज के जो लोग हैं, जो परिवार के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो एक निरंकुशता के तहत नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था के तहत अपना जीवन यापन करें और सबके सहयोग और सबके साहचर्य और सबकी उत्तरदायित्व के लिए
2: परंपराओं के थ्रू
0: जी। मैडम, आप चूंकि समाजशास्त्र से जुड़ी हुई हैं और प्राचार्य भी हैं, कॉलेज से जुड़ी हुई हैं, क्या जो मैडम कह रही हैं कि सिर्फ इतना ही है कि सामाजिक व्यवस्थाएं तो थी, आज भी है, लेकिन जो उन सामाजिक व्यवस्थाओं में ढील आ गई, वो अंकुश थोड़ा सा कम हो गया, जैसा आपने कहा कि संयुक्त परिवार से हम एकल परिवार की तरफ आ गए, तो कई बार तो ये मजबूरी है कि भाई हम जीविका के लिए बाहर चले गए, कई बार हमारे परिवार की जरूरत भी है कि हम
2: आवश्यकताओं के अनुरूप
0: जी। लेकिन सिर्फ आवश्यकताएं और ये मान्यता ही नहीं, और भी बहुत सारे कारण ऐसे रहे जिन्होंने यहाँ तक आने में तो आपका जो मानना है वो क्या है इसमें?
3: सर, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक हमारी परंपराएं हमें परिवार से अलग कर रही है,
0: जी,
3: है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब हम सोचने लगते हैं कि परिवार में जब बहू आती है तो वो बेटी की तरह ही मान होनी चाहिए, है ना, और जब दामाद आता है तो उसे बेटे का एक दर्जा दिया जाता
0: जी।
3: है। लेकिन आपने ये देखा है सोच में कि परिवर्तन के दौर में, आज के समय में, आधुनिकता के दौर में, यदि माँ बेटी को भेज रही है तो उसको कुछ अपनी संस्कार देना चाहिए
0: जी, जी,
3: है ना, कि बेटी परिवार एक नहीं, अब आपके दो परिवार एक ही हो जाएंगे
0: जी, जी,
3: है ना। यदि हमें इन परिवार में कभी हमारी छोटी बहुत सोच में गलतियां होती हैं या भूल हो जाती है तो उसे हमें हटा

0: लेना है, उसे हमें अपना एक ईगो नहीं बनाना है। कई बार ऐसा होता है ना कि बेटी ने अपना ईगो बना लिया, आज मेरे से ये कह दिया गया, सासू माता जी ने आज मुझसे ये कह दिया, या ननंद जी ने ये कह दिया
1: जी,
0: या हस्बैंड ने, परिवार में पति जी ने ये कह दिया, तो उसको ना सोच के बैठ जाती है कि क्या मेरे से ऐसा क्यों कहा गया, क्यों कहा गया।
1: जी जी,
0: यदि हम उसको ये सोचे कि क्या मेरी माँ मुझसे नहीं कहती है, क्या मेरा भाई मुझसे नहीं कहता है, क्या मेरा पिता नहीं मुझसे कहता है, तो ये गलतियां, छोटी छोटी गलतियों को हम इग्नोर करते चले जाए या थोड़ा सा हटा दें उसको, और फिर कभी हम फुर्सत के समय या हंसी मजाक के समय उस चीज को समझौते के तरीके से हम बता दें कि ये क्या चीज है हमारी, तो हम उस परिवार को बिखरने से बचा सकते हैं।
1: जी, यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि अगर जो परिवार से जिन संबंधों को हम छोड़ के गए थे, चाहे भाई को, चाहे माता को, चाहे पिता को, चाहे अपनी बहन को, अगर उस जाने वाले परिवार में भी अगर उन्हीं संबंधों को
0: हम लेने की कोशिश करते हैं,
1: तो शायद बहुत सारी चीजें समाधान के रूप में
0: हम उसे रोक सकते हैं,
1: साथ हो सकती है उसमें। मैडम, ये जो अनिता जी ने कहा कि हम कई बार छोटी छोटी चीजों को अपने उसकी अड़चन बना लेते हैं,
0: इशू बना लेते हैं,
1: इशू बना लेते हैं उसमें, तो यहां मैं फिर से उस सामाजिक व्यवस्था पर, परिवार वाली उस पर लौट के आऊंगा कि परिवार जो था वो एक जीने की कला थी। वहां हम न सिर्फ संस्कारों को जीते थे, नैतिक मूल्यों को जीते थे, बल्कि हम बहुत सारे जो हमारे जीवन के मूल्य होते हैं, चाहे हम दया की बात करें, हम चाहे करुणा की बात करें, चाहे भाव और संवेदनाओं की बात करें, चाहे हम सहयोग और सेवा की बात करें, क्योंकि कई पीढ़ियां, जैसा आपने कहा था कि कई पीढ़ियां एक साथ रहती थी, वहां वो सिखाती भी थी और होने वाली गलती पे वो थोड़ा सा अंदर से सहारा देके डांट भी लगाती,
0: संयुक्त परिवार
1: चीजें हम सीखने जी करके सीख रहे थे, वो जी करके जो सीखना था वो कहीं अब इस एकल परिवार में हमसे छूटता जा रहा है।
0: बिल्कुल,
1: यानी वो जो कमी है वो उसकी वजह से कई बार ये समस्या है।
2: आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया और ये कटु सत्य है, क्योंकि आप अगर संवैधानिक तौर पे भी देखें तो HUF फैमिली कहा जाते थे, हिंदू संयुक्त परिवार, और उसका एक मुखिया हुआ करता था जो कि दादा या परदादा होते थे। आज की परंपरा क्या है कि मुखिया वो व्यक्ति हो गया जो कमा रहा है। उस वक्त मुखिया घर का जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता था वो मुखिया होता था, चाहे वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा है। लेकिन मुखिया बड़ा ही व्यक्ति होता था और जितने लोग भी कमाते थे वो सब उस मुखिया के पास लाकर के रखते थे और वो मुखिया ही उसको खर्च करता था। उसी के अनुसार हमारी व्यवस्थाएं जब आगे चली तो जब बंटवारे होते थे तो संयुक्त हिंदू परिवार HUF कह के किया गया और सबके बराबर बराबर हिस्से किए जाते थे, यानी कि बच्चा जब गर्भ में आया और तभी उसका हिस्सा नियत हो जाता था। जैसे हम कहते थे ना कि जन्म के साथ ही हमको अधिकार मिल गया, तो ये चीज भी तभी से थी। लेकिन जैसे जैसे संयुक्तता खत्म हुई, या ये कहिए कि कुछ बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, तो वो जब बाहर सर्विस करने जाने लगे तो फिर पहले वो अकेले गए, फिर जब उनकी शादी हुई तो कुछ समय बाद परिवार ने कहा कि बच्चा भूखा रहता है, खाना पीना बाहर से खाता है, तो पत्नी को भेजा, पत्नी के साथ फिर बच्चे भी वहीं रहने लगे, फिर उनकी शिक्षा भी वहीं रहने लगी। लेकिन उस वक्त भी ये होता था कि त्योहार जब हो रहे हैं तो बच्चे घर में वापस आते थे तो वो संस्कार भी सीखते थे। आज अभी जब आपसे डिस्कशन हो रहा था तो आपने एक बात कही थी कि आज बच्चों को ये बताना पड़ता है कि पैर छू लो, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, जब दादाजी सो के उठे तो दादाजी के जो पुत्र हैं वो कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं वो सब पैर छू रहे हैं, और जब वो बाहर निकल के गए तो पड़ोसी भी है या कोई भी चल रहा है तो वो ये नहीं कहता था अंकल जी या चाचा जी, वो कहता था दादा पाए लागू, ताऊ पाए लागू। पाए लागू का भी मतलब होता है चरण स्पर्श करना। तो वो संस्कृति संस्कारों में भरी हुई थी, जिस वजह से हमारे पैर छूने के कई जो कारण थे, जो आज योगा के रूप में भी प्रयोग हो रहे हैं, वो सब चीजें थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग शहरों की संस्कृति में गए, वहां रहने लगे और हलो हाय की जिंदगी फिल्मों से आने लगी, तो परिवार व्यवस्था में भी दरक आई। पहले यह भी कहा जाता था कि पहला बच्चा जो होता है वो नानी क्या होता है, और जिससे नानी और दादी की परंपराएं भी चलती थी और बच्चे में अटैचमेंट आता था। आज वो दादी नानी के परिवारों ने एक अस्पताल का रूप ले लिया। आज इसी वजह से आप देखते हैं कि नॉर्मल डिलीवरियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि काम करना नहीं चाहते हैं, डॉक्टर्स ने उसको प्रोफेशन बना रखा है। तो ये सब चीजें भी जो परिवार के विघटन की और परिवार की व्यवस्था को तोड़ रही हैं।
1: जी,
2: और शायद इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी और बाकी लोगों ने ये महसूस किया कि परिवारों को जोड़ा जाए, तो परिवार दिवस के रूप में 1993 में संयुक्त

ने परिवार दिवस बनाने की घोषणा की और इसी के तहत परिवार दिवस को 1995 में संयुक्त रूप से संपूर्ण देश में मनाने के लिए लागू भी किया गया। तो और जिसके तहत हम सबको ये बताने का प्रयास करते हैं कि परिवार टूटने नहीं चाहिए। हम कहीं भी जॉब करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन एक तो हमें त्योहारों पे संयुक्त रूप से रहना चाहिए, उसके साथ अपने परिवार के टच में बना रहना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि बच्चों के साथ यौन हिंसा बहुत ज्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि बच्चे अकेले रहते हैं, वो चाहे जैसे साहित्य को पढ़ते हैं और देखते हैं। इसके साथ ही माता पिता दोनों जॉब पर हैं। अगर कोई मानसिक विकृति का व्यक्ति है तो वो जानता है कि बच्चा इतने समय तक अलग रहने वाला है। वो उस समय का फायदा उठाता है। और बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें एक टॉफी दो, एक बिस्किट की पैकेट

0: फायदा उठाता है और बच्चे मासूम होते हैं, उन्हें एक टॉफी दो, एक बिस्किट की पैकेट दो या प्यार से बोलो, तो वो उसे अंकल मामा कहने लगते हैं और नए अपराध को जन्म देते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो सब में वही भाव होता था कि ये उनके फलाने की नातनी है, हमारी भी नातनी है। तो अगर बच्ची कहीं अकेली जा भी रही है तो तुरंत सूचना दी जाती थी कि आपकी नातनी वहां पर है, या उसको लेके चलो तुम्हारे दादाजी के पास छोड़ते हैं, और नहीं तो दादा नानी चाची ताऊ के संरक्षण में तो बच्चे रहते ही थे। तो इस तरीके से अपराधों पर भी अंकुश था और संयुक्त परिवार के आनंद अपने अलग थे, अलग ही एक महत्व था। और आज एकल परिवारों के दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं और परिवारों में जो स्थिति हो रही है वो आप सब मैं देख ही रहे हैं।
1: जी जी। अब अनिता जी, जैसा प्रतिभा जी ने कहा कि हम उस एकल परिवार के जो दुष्परिणाम झेल रहे, शायद वो एकल परिवार के जो लाभ है उनसे कई गुना ज्यादा है जो परेशानियां हम समाज में आज देख रहे हैं, चाहे वो परिवारों में जो बच्चों में जो उनके स्वभाव में परिवर्तन आ रहा हो, एग्रेशन हम देखते हैं, कई बार बच्चे माँ बाप की मान भी नहीं रहे हैं, कई बार जो जिस तरह की मुद्दे अभी प्रतिभा मैडम ने उठाए कि चाहे वो बच्चों के साथ हो रहा हो, दुर्व्यवहार हो, तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो परिवार के टूटने से, एकल परिवार के होने से हमारे सामने आ रही है। तो क्या आप मानती है, क्योंकि आप तो एजुकेशन उससे जुड़ी हुई है, जो शिक्षा है, जो आज शिक्षा की जो व्यवस्था है, शिक्षा के संदर्भ में यही कहा जाता है शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में एक टूल के तौर पे है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा भी आज एक कमाने का जरिया हो गया हम बच्चे को और परिवार में आने वाले अपने जो बच्चे हैं उनको यही सिखाते हैं कि आपको बड़ा व्यक्ति बनना है, जो एक अच्छी इनकम
2: करेगा
1: अच्छा, उसको एक पद पोस्ट और प्रतिभा मिलेगी,
2: उससे परिवार का भी एक अलग पहचान
1: बनेगा। लेकिन क्या इस तरह की जो बच्चों में मानसिकता है, जो बच्चा आगे चल के समाज का अंग बनेगा, फिर वो शायद मैं समझता हूँ बड़ा व्यक्ति तो शायद बन जाता है लेकिन परिवार का अंग नहीं बन पाता। जैसा इन्होंने एक बात को उठाया कि कम से कम त्योहार तो हम सामूहिक रूप से मना लें, हमारे पास शायद त्योहार ही नहीं बल्कि परिवारों के उन संस्कारों के लिए कई बार समय नहीं मिलता
2: जब जो हमारे परिवार से मिलते हैं।
1: हाँ, कई बार तो ऐसा सोचते हैं कि दाह संस्कार और वहां तक भी बच्चे
2: नहीं पहुंच पाते
1: समय पर। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था है, क्या इन टूटते हुए परिवारों में या परिवारों में आ रही समस्याओं के लिए कहीं कुछ ऐसा लगता है कि जिसमें किया जाना बहुत जरूरी है उसमें?
2: जी सर, है ना, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो संस्कारों की बात हमारी आ रही है ना। अब पहले हम परिवार में हम की तरह जिया करते थे। जब से परिवर्तन आया है, चेंज आया है, आधुनिकता आई है ना, पाश्चात्य संस्कृति हमारे साथ शुरू हुई है, फैशन के दौर आ गए हैं, है ना, तो हर बच्चा फैशन के उसमें जीना चाहता है। संस्कारों में हमारे यहाँ जैसे साड़ी पहनना, बच्चे को सही तरीके से रहना, प्रॉपर गर्ल्स को रहना, आज की डेट में शर्ट और पैंट पहनने में लड़कियां बड़े अपनी शान समझती हैं, वो सोचती हैं शायद हम भी आगे मॉडलिंग कर सकते हैं या इस तरह से, मतलब अपने आप को चेंज कर लिया है। इसी तरह आपने लड़कों के भी कपड़ों के रहने सहने तरीके, बालों को बढ़ाना, रंगना, कलर करना, ये मतलब जो हमारी परंपराएं थी वो उन सबको हमने इग्नोर कर दिया है पाश्चात्य संस्कृति में, है ना। शायद हम भी अंग्रेज बनना चाहते हैं।
1: जी नहीं, अंग्रेज बनना शायद इतना बुरा भी नहीं है।
2: नहीं,
1: अपनी चीजों को
2: छोड़ना नहीं, वही हमारी संस्कृति समाप्त नहीं करनी है हमें।
1: जी
2: और आज आप देखिए कि फिर वही हमारी संस्कृति आ रही है, वापस आ रही है। जब बच्चों को इस चीज का एहसास हो रहा है कि पाश्चात्य संस्कृति में क्या बुराइयां हैं,
1: क्या हम खो रहे की कॉस्ट पे हम क्या खो रहे हैं?
2: शायद ये आप ये देखिए कि आज हम प्लास्टिक में खाना खाते हैं, हम कैंसर की ओर बढ़ रहे हैं, है ना। पॉलिथीन से हमने यूज किया तो हम अपनी ही पृथ्वी को नष्ट कर रहे हैं, जिससे हमें उपजाऊ बहुत अच्छी कृषि करते थे, है ना। तो वो सब चीजें आप धीरे धीरे करके आप फिर उसी को समाप्त करके आप अपनी प्राकृतिक चीजों पे आप फिर लौट रहे हैं।
1: जी, मतलब कहीं ना कहीं
2: हम वापस फिर वहीं पर आ रहे हैं,
1: देख पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं जो हमने अपनाया शायद वो हमारे लिए।
2: अब बात आती है शिक्षा की, लेकिन आज की शिक्षा में हर माता पिता ये चाहता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या बड़ी से बड़ी पोस्ट पे हो तो हमारा नाम भी बड़े गर्व से लिया जाए, लेकिन हम इस सोच में पीछे थोड़े से रह जाते हैं, क्या हमारा बच्चा उतना कर सकता है या नहीं, क्या वाकई में बच्चा डॉक्टर बन सकता है या उसकी क्वालिटी है। हमें प्रेशर नहीं करना बच्चे के माइंड पे। आपने ये देखा है कि बड़े बड़े हॉस्टल में कोचिंग में हम भेज रहे हैं बच्चों को, आप ये देखिए कोटा फेमस है इस समय कोचिंग के लिए, आईटीआई के लिए, है ना। वहां पे बच्चों को भेज दिया, बच्चे सोसाइटी

0: कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रेशराइज किस तरह से है, दो तरफ से है। एक तो माता पिता ने कर्ज लिया है कि बच्चे को कोचिंग करा रहे हैं, बेटा तुम्हें आईटीआई में जाना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, बड़ी तुम्हें कॉलेज फाइट करनी है या मेडिकल में जाना है आपको, है ना, या बहुत बड़े आईएएस पीसीएस बनना है आपको, अधिकारी बनना है। क्या हम छोटा सा एक बिजनेस नहीं कर सकते यदि बच्चे में नहीं है दाग? तो हम बच्चे को समझे ना, हम बच्चे पे प्रेशर ही डालें
1: जी, यानी बच्चा हमारा क्या कर सकता है वो अगर हम चुनके उसको चुन दे दें,
0: हाँ।
1: तो शायद कहीं ना कहीं इसका मतलब पेरेंट्स से भी कुछ गलती हो रही है,
0: हो रही है परिवार में, पेरेंट्स भी।
1: प्रतिभा जी, यहाँ मैं थोड़ा सा जो बड़ा अच्छा अनीता जी ने एक प्रश्न उठाया कि जो माँ बाप बच्चे को बनाना चाह रहे हैं शायद वो उसकी प्राकृतिक क्षमताओं के खिलाफ भी जा रहा है, ऐसा शायद आप
0: बिल्कुल।
1: तो क्या इस तरह के जो बच्चे जो समाज में स्वयं एक अभिभावक की भूमिका में आते हैं, स्वयं एक परिवार का अंग होते हैं, उस परिवार के संचालन की जिम्मेदारी जब उन पे होती है, तो जो समाज के और परिवार के संबंधों का जो अंतर्द्वंद है, क्या कई बार फिर वो उन पे ज्यादा हावी हो जाता है और उसका वो जो प्रेशर है उसको बियर नहीं कर पाते, क्या इसलिए भी परिवारों के टूटने की एक आधारशिला हो जाती है, क्योंकि वो जो स्वाभाविक थे शायद वो नहीं बन पाए और वो बन गए जो उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर आरोपित किया था। तो क्या ये परिवार की इस बुनियाद को हिला रहा है क्या?
2: जी बिल्कुल, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है
1: कि
2: परिवार की बुनियाद इन्हीं कारणों से भी हिल रही है कि जैसे मेरे परिवार के मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं और मेरी इच्छा है कि मुझे प्रिंसिपल टीचर बनना है
1: जी।
2: मैं टीचर की राह में तैयारी कर रही हूं और मुझे जबरदस्ती डॉक्टर की लाइन में भेज दिया गया। ये इनके इन प्रकरण में डॉक्टर या तो बन गई
1: जी जी
2: या नहीं बन पाई, तो उस स्थिति में प्रेशर मेरे अंदर था। लेकिन जब मेरा अपना परिवार चला तो मैंने सोचा कि चलिए मैं टीचर नहीं बन पाई, मैं अपने बच्चे को टीचर बना दूं।
1: जी जी।
2: लेकिन मेरे बच्चे के मन में एक आजकल टेक्निकल का जमाना है, वो गैजेट्स को यूज करता है,
1: हाँ।
2: वो कंप्यूटर साइंस में जाना चाहता
1: जी
2: है
1: जी।
2: और मैंने जबरदस्ती उसको उसमें डाल
1: जी,
2: दिया।
1: फिर वो ये गलती
2: फिर वो एक गलती हुई, क्योंकि मेरे साथ जो गलती हुई मुझे उस वक्त ये समझना चाहिए था कि जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी बात को नहीं समझा और मैं जो चाहती थी वो नहीं मुझे मिली, मैं अपने बच्चे को क्यों प्रोसराइज करूं। हमें उसके सामने ऑप्शन रखने चाहिए कि देखिए हमारा भी हुई है, तुम्हारी इच्छा क्या है। हम जब उस बच्चे की इच्छा जान लेते हैं और तब वो अपने करियर का चुनाव करते हैं तो उसके मन में माता पिता के प्रति भी सम्मान रहता है और अपने दादा के प्रति भी सम्मान रहता है कि मेरे दादा के कारण मेरे पिताजी जो नहीं बन सके जो बनना चाहते थे, लेकिन मेरे पिताजी ने मेरी भावनाओं को समझा है तो अवसाद की स्थिति नहीं आती है और मान सम्मान बढ़ता है। तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 8th 10th तक हम उनको राह दिखाएं, जब उनके अंदर परिपक्वता आ जाती है जिसमें कि हम लीगल एज कहते हैं कि 16 और 18 कंप्लीट कर लिए हैं, उसके बाद हमें बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए
1: जी जी।
2: कि आप अपना करियर चुनिए। हाँ, हमको लगता है कि वो गलत करियर में जा रहे हैं, वो नाचने गाने का करियर कर रहे हैं, ये सब जो टेम्परेरी करियर है उनको पढ़ाई के साथ कर रहे हैं, तो हमको रोक लगानी चाहिए। अन्यथा की दृष्टि में बच्चों को आप स्वतंत्र अगर छोड़ देंगे तो वो आपका मान सम्मान भी करेंगे और अपने करियर की दिशा में और परिवार की दिशा में सही दिशा में बढ़ सकेंगे।
1: यानी एक जो सलाह होती है वो हमेशा पेरेंटिंग में जवाबदेही पैदा करती है, लेकिन अपने किसी निर्णय को या अपनी किसी इच्छा शक्ति को या अपने किसी पुराने को आपको छूटे
0: बच्चों पे पैसा नहीं डालना,
1: वो शायद बच्चों में एक एग्रेशन पैदा कर देती है। अब उसमें चाहे कारण कुछ भी हो, मैं अब थोड़ा सा अपने इस कार्यक्रम के दूसरे पड़ाव पे आना चाहता हूँ,
2: बिल्कुल।
1: कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, हम चाहे परिवार की दबाव में कहीं गलत पहुंच गए हों या समाज की दिशा हमको नहीं मिल पाई हो या समय पर सही सलाह नहीं मिल पाई हो, लेकिन जब हम एक परिवार के अंग हो जाते हैं, जहां हम दो और दो मिलकर के चार हो जाते हैं, दो हमारे बच्चे, लेकिन कई बार उस स्थिति में भी फिर हम परिवार के विघटन के कारण के उस पर आ जाते हैं, तो वो एक एज ए ह्यूमन बीइंग एक मानवीय दृष्टिकोण के नाते, क्योंकि जो जो छोटे बच्चे हैं
2: जी जी,
1: आज हो सकता है हम दो अपनी ईगो की वजह से सेपरेशन चाहते हों, लेकिन जिन दो बच्चों का प्राकृतिक उत्तरदायित्व हमको दिया है ऊपर वाले ने, शायद उनके साथ अन्याय हो जाता है। तो क्या फिर मतलब समाधान कहाँ से निकलेगा, कौन इसकी पहल करे, किन चीजों को हम छोड़े ताकि कम से कम किसी भी कॉस्ट पे हम परिवार को तो बचा ले जाए, उसको विघटन उसका कारण नहीं हो, क्योंकि वो कोई अच्छे परिणाम समाज को और परिवार को नहीं दे सकता
2: जी।
1: तो फिर एक पहल तो बनती है, तो आप तो रोजाना इससे विचार होती है,
2: बिल्कुल बिल्कुल।
1: इस तरह की सलाह लोगों के लिए
2: आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज परिवार टूट रहे हैं।

0: उठ रहा है ये सब जानते हैं। एक तो सबसे बड़ा पेरेंट्स का भी जॉब में होना, तो वो तनाव वाली स्थिति आ जाती है। जब पति पत्नी जॉब में है तो पत्नी भी थकी आ रही है और पति भी थका हुआ आ रहा है, तो हमको सामंजस्य बिठाना चाहिए कि और ये सोचना चाहिए कि जब मैं थक सकता हूँ, मैं खाना बना के नहीं जा रहा हूँ, मैं कपड़े नहीं धो रहा हूँ, मैं जॉब करके आ रहा हूँ, तो मुझे थकान हो रही है, जबकि मेरी पत्नी खाना बना के भी जा रही है, आके भी बनाएगी और वो ऑफिस में भी काम करके आ रही है, तो उसके अंदर भी थकान हो रही होगी, उसके अंदर भी तनाव होगा। तो थोड़ी देर हम शांति से बैठें या कभी पूछ ले पति कि क्या आपको चाय चाहिए, मैं बना लेता हूं आज
1: जी, जी।
0: तो उसके अंदर जो ऑफिस का तनाव होगा वो वहीं छूट जाएगा और वो ये नहीं कहेगी कि आप चाय बना लीजिए, बस आपका पूछना ही उस तनाव को कम कर देगा, और वो तुरंत चाय बनाने रसोई में चली जाएगी। और आप अगर आपको लग रहा है कि आप जल्दी आ गए और पत्नी लेट है, आपने चाय बना के तैयार रखी है, तो पत्नी खुश हो जाएगी। तो और जब इस तरीके का सामंजस्य होता है, और नहीं तो चाय बनाते में उसके पास खड़े हो गई कि आज मूड ऑफ क्यों है, आज ऑफिस में क्या क्या किया, मेरे ऑफिस में तो आज ये हुआ, उन सब बातों को अगर हम करें और ऑफिस की सारी परेशानियों को ऑफिस में छोड़ें और घर में पारिवारिक रूप से जीवन व्यतीत करें, जैसे शादी के वक्त करते हैं या किसी और वक्त करते हैं, या शादी में अन्य परिवार में जो उत्सव होते हैं उसी तरीके से हम रोज व्यवहार करें, तो परिवार नहीं टूटेंगे। बच्चों के साथ हम समय दें, थोड़ा सा बच्चों को हम समझाएं, उनका होमवर्क देखें, स्कूल में टीचर्स ने क्या कहा, सुबह उनको लंच में क्या ले जाना है, उनको अगर बाहर घूमने जाना है तो कपड़े कैसे लेने हैं, संडे को शॉपिंग क्या करनी है, ये सब बातों पर अगर हम चर्चा करें तो परिवार टूटेंगे नहीं, संयुक्त रहेंगे। और फिर त्योहार हो, शादी व्यवहार हो या संडे की छुट्टी हो, तो सभी के चाचा नानी ताऊ सब होते हैं, उनके पास हम जाकर के अगर समय बिताएं तो बच्चों को भी एक संस्कार मिलेगा और परिवार तो टूटेगा ही नहीं।
1: यानी आप कहना ये चाह रही कि जो जीवन की सहजता है, जीवन की जो मधुरता है, जो कोमलता है, जो भाव और संबंधों की एक जो भावभूमि है, अगर वो बनी रहे, उसमें काम शायद इतने महत्वपूर्ण नहीं होते लेकिन काम करने की जो भावना है वो काफी महत्वपूर्ण रखती है। तो इसमें चलते चलते अनिता जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो महिलाएं जो कामकाजी हैं, जो परिवार की हो सकता है आज हमें जरूरत है, क्योंकि जिस तरह का जीवन स्तर हो गया है वहां आर्थिक मामले बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें जो महिलाओं के सामने जो दोहरी चुनौती आ गई है, प्राकृतिक रूप से घर की जो जिम्मेदारियां उनको बहन करते हुए ही उनको बाहर निकल के काम करना है, तो इसमें जो सामंजस्य बिठाना है, वहां कुछ आपके जो टिप्स या व्यवहार के कुछ बनते हो जो आप?
2: मैं खुद ही कहूंगी सर, मैं खुद ही जॉब करती हूँ इस समय, है ना,
1: इसलिए मैं आपसे,
2: और मेरा परिवार भी है, मैं ज्वाइंट फैमिली में हूँ, मेरे फादर इन लॉ मदर इन लॉ दोनों ही मेरे साथ ही रहते हैं, और मेरी मैरिज को भी 28 ईयर्स हो गए, लेकिन कभी मैंने ये चीज सोची नहीं है ना, मेरी प्रायोरिटी क्या है, मेरा कार्य कहाँ है, मेरे बच्चे को मेरी आवश्यकता क्या है, मेरे ससुर जी को मेरी क्या आवश्यकता है, मेरी मदर इन लॉ मतलब मेरी सासू माता जी को क्या आवश्यकता है, भाई उस चीज का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए।
1: सारे दिन हम जो बाहर जो
2: हम सारे
1: परिवार के
2: एक्चुअली हम परिवार का कार्य परिवार में करें और बाहर का कार्य बाहर करें,
1: जी जी,
2: तो शायद हम परिवार
1: एक दूसरे के बोझ को,
2: हाँ ये नहीं कि हम अपनी, हाँ हम अपने बाहर का बोझ लाए घर में, मेंटली टेंशन में हम ये करते हैं हम वो करते हैं, ये चीज यदि आप नहीं करते हैं तो आप खुश रहेंगे, और यदि आप घर की समस्याओं से बाहर जाते हैं तो ये नहीं कि हमारे परिवार में आज क्या हुआ, आपका अपना जो कार्य यदि आप उसको खुश होकर करते हैं, यदि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है हर कार्य को करने के लिए, तो शायद आप हर समस्याओं से लड़ सकते हैं।
1: प्रतिभा जी, क्या जो हमारी जो अपनी क्षमता है उसको ही महसूस करके हम उत्तरदायित्व भी संभालें और आगे जो दूसरी जिम्मेदारियां हैं, कई बार हम अपनी क्षमताओं से बाहर चले जाते हैं, ये भी क्या एक तनाव का कारण बन जाता है?
0: तनाव का कारण है, हम लोग सोचते हैं कि परिवार से ज्यादा हम बाहर हैं और हमारी क्षमता है एक बाल्टी पानी लाने की और हम दोनों हाथों में बाल्टी पानी लेके आएंगे तो कंधे हमारे ही दर्द करेंगे, हमको उतना ही काम करना चाहिए जितनी हमारी क्षमता है, हमारा परिवार प्रेशर में ना आए, हम प्रेशर में ना आए, परिवार खुशी रहेगी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, और जब परिवार खुश रहता है तो एक अच्छा समाज बनता है, और जब अच्छा समाज होता है तो एक अच्छा राष्ट्र भी बनता है। तो हमें सबसे पहले परिवार को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि परिवार से ही सारी चीजें निकल करके चलती हैं, और परिवार को संयुक्त रूप से रखना बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात है कि जॉब कर रहे हैं लेकिन साथ बैठकर साथ मिलकर काम किए जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा।
2: जैसे हम काम करते हैं, मैं एक चीजें बोला, यदि हम

0: में भी वर्क करें, कहीं भी हम काम करते हैं, लेकिन यदि हम रात का भोजन सब मिलकर एक साथ करते हैं
1: जी जी,
0: तो हम परिवार
1: तो काफी
0: बहुत कुछ समस्याओं को हम समाधान
1: जी
0: कर सकते
1: जी। श्रोता बंधुओं, नुस्खे बहुत हो सकते हैं, आयाम बहुत हो सकते हैं, समस्याएं हो सकती है, उसके समाधान भी बहुत हो सकते हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में जो परिवार हमारी जीवन की आधारशिला रहा, जीने की कला रहा, जीने की पाठशाला रहा, हमने यहाँ जीना सीखा है, तो वो जीना ही अगर हम पुनः शुरू कर दें तो शायद बहुत सारी समस्याओं के समाधान स्वयं में निकल आएंगे। समय इतना ही है, आप दोनों आई और हमारे श्रोताओं के साथ अपने संस्मरण और अपने इस जानकारी को बांटा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
2: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे ये परिचर्चा, जिसका विषय था भारतीय सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार। इस परिचर्चा में प्रतिभाग कर रही थी प्रतिभा शर्मा और डॉक्टर अनीता गुप्ता। आपसे बात कर रहे थे ओपी सिंह। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है।
4: आप सुन रहे हैं FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी मथुरा वृंदावन के कार्यक्रम।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार यानी 11 मई सन 2026 को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 11 मई सन 2026 और समय अपराह्न 1:15 से। सूचना समाप्त हुई। ये आकाशवाणी का मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रातः के 10:30 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

बातों बातों में इस फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में। गीत को लिखा था योगेश ने, संगीत था राजेश रोशन का। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत फिल्म अदालत से।

कार्यक्रम का ये अगला गीत है फिल्म आदमी खिलौना है से। इस गीत को आवाज दे रहे हैं मोहम्मद अजीज और अलका याग्निक। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रवण का।

बहार आने तक। इस फिल्म का ये गीत आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह और साथियों की आवाजों में। और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला गीत। इस गीत को आवाज दी है रेमो फर्नांडिस, सुजनैन और साथियों ने। गीत को लिया है फिल्म भागम भाग से, शब्द रचना समीर की, संगीत है प्रीतम का।

0: हेलो आकाशवाणी।
1: हेलो आकाशवाणी सर, नमस्कार
0: नमस्कार
1: सर। मैं गिरीश बोल रहा हूँ मणिपुर से।
0: गिरीश जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है सर, आप सुनाइए।
0: एकदम अच्छे हैं। गांव में क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: खेती में ग्वार तुड़ाई हो रही है सर।
0: अच्छा,
1: हाँ जी,
0: बाकी फसल कट चुकी हैं?
1: बाकी फसल कर चुकी है, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की।
0: जी। परिवार में सब ठीक हैं आपके?
1: परिवार में सब ठीक है सर। आज तो मौसम हो रहा है बहुत बढ़िया।
0: जी हाँ, पिछले दिनों बारिश होने से मौसम में काफी परिवर्तन आया है, राहत मिल गई है गर्मी से।
1: आज बादल हो रहा है।
0: जी गिरीश जी, क्या फरमाइश रहेगी आज?
1: मूवी का नाम है स्वर्ग
0: जी
1: और गाना है ए मेरे दोस्त लौट के आजा। और सर हमारे दोस्तों का नाम बताना चाहता हूँ, जैसे श्यामवीर भैया जी है,
0: जी
1: विष्णु भैया जी हैं, पंडित भैया जी हैं।
0: सुनवाते हैं आप सभी मित्रों की फरमाइश पर ये गीत। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर जी।

0: हेलो आकाशवाणी,
1: चार सब प्रेम प्यार है, नमस्कार
0: नमस्कार, स्वागत आपका।
1: जी। हृदय से धन्यवाद करते हुए मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मक्सा उत्तर प्रदेश से वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे?
0: एकदम अच्छे हैं हम तो, आप कैसे हैं?
1: मैं भी अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपका आशीर्वाद है, बाकी बिहारी कृपा है, घर परिवार में भी सब लोग आनंद मंगल से हैं। कामना करता हूँ प्रभु आपको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और मनोरंजन करने के लिए आप तत्पर रहें। जी
0: परिवार में सब ठीक?
1: जी
0: बताइए, आज प्रजापति जी क्या फरमाइश रहेगी आपकी?
1: आज मानवर मदर डे है और माँ का जो स्थान है वो सर्वोपरि है। माँ के सम्मान में जितना भी कहा जाए बहुत कम है।
0: बिल्कुल
1: इस तो मातृ दिवस पर, मदर डे के दिवस पर आपको, सारे श्रोताओं को, आकाशवाणी परिवार को बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ।
0: धन्यवाद
1: और इसी तारतम्य में आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है दादी माँ,
0: जी।
1: मन्ना डे साहब के साथ में महेंद्र कपूर साहब ने गीत को गाया है।
0: बोल क्या है गाने के?
1: उसको नहीं देखा हमने कभी, इसकी जरूरत क्या होगी।

0: होगी। ये प्यारा ससुराल गीत मदर डे के अवसर पर आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ आकाशवाणी मथुरा वृंदावन से।
1: सुनवाते हैं आपकी फरमाइश, बहुत बहुत धन्यवाद प्रजापति जी।
0: जी हृदय से धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं साथ करता हूँ सादर नमस्कार।
1: नमस्कार।

अनुपमा देशपांडे की आवाज में अभी आपने सुनी ये कव्वाली। फिल्म का नाम था हीरो का चोर। और इसी के साथ ही हमारा आज का फिल्मी कव्वाली का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। प्रस्तुत है ब्रज लोकगीत। आज के कलाकार हैं मुरालीलाल शर्मा।

अभी आप सुन रहे थे ब्रज लोक गीत। आज के कलाकार थे मुरारी लाल शर्मा। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री मोदी ने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक के 4 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: कौन से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है? कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। आईपीएल क्रिकेट में

0: आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 102.2 MHz पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण।

रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे रविवार सरी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

अब से कुछ ही देर में यानी कि 1:15 पर श्रोता सुनेंगे श्रीमती माया श्रीवास्तव की लिखी हुई झलकी वचन। प्रस्तुति सुरेंद्र शर्मा चंद्र की होगी।

संध्या 5:30 पर युवा साथियों का कार्यक्रम होगा युववाणी। इस मैच की बात होगी मदरसा शिक्षा आधुनिकरण विषय पर। साथ ही श्रोता एक झलकी भी सुन सकेंगे आनंद बल्लभ गोस्वामी की लिखी हुई नशे का जहर, प्रस्तुति आर के त्रिपाठी की होगी।

संध्या 6:15 पर ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। इसमें आप चर्चा सुनेंगे गर्मियों में दुधारू पशुओं का आहार, साथ ही श्रोता मन भावन के अंतर्गत ब्रज लोकगीतों का भी आनंद ले सकेंगे।

संध्या 7:05 पर ब्रज साहित्य कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे ब्रज काव्य मकरंद। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे उद्धव शतक सौ पाठ।

रात्रि 8:30 पर एक ही फिल्म से कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। सुहाने तराने श्रोता सुनेंगे रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर प्रादेशिक संगीत का समा कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा।

0: अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर।
1: आकाशवाणी नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: गान आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। आइए सुनते हैं माया श्रीवास्तव की लिखी हुई झलकी वचन, प्रस्तुति सुरेश चंद्र की है।
1: वचन आइए सुने श्रीमती माया श्रीवास्तव की लिखी झलकी, प्रस्तुति सुरेश चंद की है।

0: जरा मेरे पास आओ।
1: क्या बात है माँ?
0: गोपाल कहाँ है बेटी?
1: माँ भैया डॉक्टर को लेने गए हैं, आते ही होंगे।
0: अरे उसे कहाँ भेज दिया? उसे जल्दी बुलाओ बेटी, जल्दी बुलाओ।
2: माँ, माँ देखो डॉक्टर साहब आ गए। माँ
0: बेटा, बेटा तू आ गया।
2: हाँ माँ, हाँ
0: मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही थी।
2: माँ,
0: बेटा मेरी सुन।
2: माँ माँ मैं पहले डॉक्टर साहब को देख तो लेने दो। माँ
0: नहीं, नहीं मेरे पास बहुत कम समय है, पहले तू मेरी बात सुन, वरना मेरी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा।
2: माँ ऐसी क्या बात है? माँ ऐसी क्या बात है?
0: बेटा मैं आज अपनी जिम्मेदारी तेरे ऊपर छोड़ कर जा रही हूँ, अपनी बहन का ख्याल रखना। आज इसकी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, मुझे वचन दे। इसका विवाह किसी अच्छे घर में करेगा, मुझे वचन दे।
2: माँ माँ माँ मैं वचन देता हूँ कि मैं राधा के लिए सब कुछ करूँगा माँ, और उसे हर हाल में सुखी रखूँगा माँ।
0: बेटा तूने मेरा बोझ हल्का कर दिया, अब मेरा अंतिम समय आ गया है।
2: नहीं माँ, नहीं नहीं।
0: खुश रहना मेरे बच्चों,
2: माँ
0: खुश रहना मेरे बच्चों, खुश रहना मेरे बच्चों।
2: माँ माँ माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ।
1: मैं छोड़कर मत जाओ माँ, मैं छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना कैसे जिंदा रहूंगी माँ। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ।

0: समय बीतता गया, दिन गुजरते गए और समय के साथ साथ गोपाल भी अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाता गया। वह दिन रात मेहनत कर पैसा कमा रहा था जिससे राधा की शादी किसी अच्छे घर में हो सके। राधा अपनी पढ़ाई कर रही थी।
1: भैया, मैं कॉलेज जा रही हूँ और हाँ, आपका टिफिन मैंने रख दिया है, ध्यान करके ले जाना, ऐसा ना हो घर पर ही भूल जाओ और फिर कैंटीन में खाओ।
2: हाँ हाँ राधा, ले जाऊंगा, नहीं ले जाऊंगा तो शाम को मेरी खैर नहीं है।

0: अरे रिक्शे वाले भैया, खाली हो क्या?
1: हाँ खाली है बहन जी, कहाँ चलोगी?
0: यूनिवर्सिटी चलना है।
1: बैठो ना रिक्शे में मेरे, मैं अभी चलता हूँ।
0: संभाल कर चलाओ भैया।
1: एक बगल, अरे भाई हट के, अरे कहाँ चले आते, एक बगल, ओ भीड़, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ। इन कार वाले साहब की गलती है, कार में बैठने के बाद इनको लगता ही नहीं है कि हम सड़क में चल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे आसमान में जा रहे हो।
2: नहीं नहीं, इसमें रिक्शे वाले की गलती है, इसने बगैर हाथ दिए गलत दिशा में रिक्शा मोड़ दिया, देखो इसकी दशा देखो।
1: अरे बहन जी आप गलत कहते हैं, कार वाले की गलती है।
3: देखिए एक दूसरे पे गलती लगाने के बजाय आप मेरी मदद कीजिए, इनको काफी चोटें आई हैं, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा, आप मेरी मदद कीजिए प्लीज। हरी अब, मैं डॉक्टर वर्मा हूँ, सिविल हॉस्पिटल में सर्जन हूँ।
2: चलो भाइयों चलो,
1: डॉक्टर
2: साहब की मदद करो।
3: सिस्टर ये लड़की मेरी कार की चपेट में आ गई है, इसकी पोजीशन ठीक नहीं है, फौरन ऑपरेशन करना होगा, आप ऑपरेशन की तरह कीजिए और हाँ इसके परिवार वालों को भी सूचित कर दीजिए।
4: सिस्टर क्या अभी कोई लड़की यहाँ लाई गई है सिस्टर, जिसका कार से यूनिवर्सिटी रोड पर एक्सीडेंट हुआ है?
2: जी हाँ ऐसी ही लड़की अभी लाई गई है, उनका अभी ऑपरेशन चल रहा है।
4: हे भगवान मेरी बहन की हेल्प करना, सिस्टर मैं अपनी बहन से मिलना चाहता हूँ।
2: देखिए अभी ऑपरेशन चल रहा है, आप बाहर प्रतीक्षा कीजिए।
4: डॉक्टर साहब मेरी बहन कैसी है डॉक्टर साहब, प्लीज बताइए ना।
3: देखिए वह अभी बेहोश है, होश में आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, आप ईश्वर पर भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा।

0: मैं कहाँ हूँ? मुझे यहाँ कौन लाया है?
1: डॉक्टर साहब देखिए, राधा को होश आ रहा है। डॉक्टर साहब,
2: मिस राधा, हाउ डू यू फील? आप कैसा महसूस कर रही हैं?
0: मैं ठीक हूँ, लेकिन आपने मेरी आंखों में पट्टी क्यों बांध रखी है? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? डॉक्टर, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है?
2: ये आप क्या कह रही हैं मिस राधा? आपकी आंखों पर तो कोई पट्टी नहीं बांधी गई है, जरा रोशनी में देखने का प्रयास कीजिए।
0: डॉक्टर, मेरी आंखों को क्या हुआ है? क्या हुआ है मेरी आंखों को? आप बताते क्यों नहीं? बताते क्यों नहीं डॉक्टर, क्या हुआ है मेरी आंखों को? क्या हुआ है?
2: अच्छा, आप पेशेंस रखिए जरा, मैं अभी चेकअप करता हूँ। इनकी आंखों की रोशनी चली गई है।
1: डॉक्टर साहब, नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बहन की आंखों की रोशनी लानी होगी। डॉक्टर साहब, आप मेरा सब कुछ ले लीजिए, परंतु मेरी बहन को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बहन के अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। डॉक्टर साहब,
2: देखिए आप शांत हो जाइए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा और जरूरत पड़ी तो अन्य आंखों के विशेषज्ञों को बुला लूंगा। आप धीरज रखिए।
1: डॉक्टर साहब, कुछ भी कीजिए डॉक्टर साहब, मेरी बहन की आंखें लौटा दीजिए डॉक्टर साहब, वरना मेरी जिंदगी अंधकार में हो जाएगी।

0: अरे
1: ये क्या कर रही थी आप? आपने इतना खतरनाक कदम क्यों उठाया?
2: ओह डॉक्टर वर्मा आप?
1: हाँ मिस राधा, मगर तुमने मुझे पहचाना कैसे?
2: डॉक्टर जब आंखों की ज्योति भगवान ले लेता है तो मन की आंखें खुल जाती हैं डॉक्टर। उसी दृष्टि से मैंने आपके स्पर्श मात्र से आपको पहचान लिया। परंतु आपने इतने दिनों बाद आने का कष्ट कैसे किया?
1: मैंने सोचा काफी दिन हो गए हैं आप लोगों से मिले हुए, और हाँ मिस्टर गोपाल से भी आपके बारे में कुछ विशेष बातें करनी थी।

0: भैया तो अंदर कमरे में गुमसुम उदास बैठे हैं। अच्छा आइए अंदर तो चलिए। भैया भैया कहाँ हो तुम? देखो तो कौन आया है। ये क्या भैया तुम रो रहे हो? मगर क्यों? रोना तो मुझे चाहिए जिसका जीवन अंधेरों से घिरा हुआ है। तुमने क्या नहीं किया मेरे लिए? भाई ही नहीं माँ बाप का प्यार भी दिया है। दुनिया भर की मुसीबतें झेलते रहे मगर मुझे कभी भी दुख का एहसास तक नहीं होने दिया। मेरा नसीब ही ऐसा है तो तुम क्या कर सकते हो भैया तुम क्या कर सकते हो?
1: नहीं राधा, नहीं नहीं मेरी बहन, ऐसा मत कहो। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि माँ को दिए वचन को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ।
2: गोपाल, गोपाल, मैंने सब सुन लिया है और देखा और समझ लिया। मुझ पर भरोसा रखो तो एक बात कहूँ।
1: कहिए आप क्या कहना चाहते हैं।
2: गोपाल, तुम अपना वचन पूरा करो और राधा का हाथ सदैव के लिए मेरे हाथों में सौंप दो। मैं भगवान की शपथ लेकर कहता हूं, जहां की सारी खुशियां राधा की झोली में डाल दूंगा। गोपाल, राधा की झोली में डाल दूंगा, राधा की झोली में डाल दूंगा।
0: डॉक्टर मेरे ऊपर तरस खाकर इतना बड़ा उपकार करने की आवश्यकता नहीं है। यह ठीक है आपकी कार से ही मेरा एक्सीडेंट हुआ लेकिन जब मेरा नसीब ही ऐसा है तो मैं अपने साथ किसी दूसरे को इसमें शामिल क्यों करूं?
2: नहीं राधा, नहीं, मैं तुम पर तरस नहीं खा रहा हूं, बल्कि सचमुच मैं तुमसे प्रेम करता हूं। चाह तो कई बार की अपने मन की बात तुम्हें बता दूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया। आज गोपाल से भी इस विषय में बात करने आया था।
0: लेकिन
1: राधा, डॉक्टर साहब की बातों में सच्चाई है। यदि ऐसा नहीं होता राधा, तो यह तुम्हारे आंखों के ठीक होने का इंतजार करते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया राधा। एक हफ्ते बाद तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होना है। विदेशों से भी कई विशेषज्ञ बुलाए गए हैं।
0: ठीक है मैं अपना जवाब ऑपरेशन होने के बाद ही दूंगी।
2: देखो राधा, अब धीरे धीरे आंखें खोलना।
0: भैया कहाँ हो तुम? भैया देखो तो सही। भैया मैं सब कुछ देख सकती हूँ सब कुछ देख सकती हूँ। भैया देखो आओ तो सही। देखो ये मैं तुम्हें भी देख सकती हूँ सब कुछ देख सकती हूँ। मैं सब कुछ देख सकती हूँ भैया मैं सब कुछ देख सकती हूँ।
1: हे प्रभु, तुझे बारंबार प्रणाम है कि मेरी बहन की आंखें वापस आ गईं। तुझे बारंबार प्रणाम है प्रभु। डॉक्टर साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। डॉक्टर साहब,
2: देखो गोपाल, आज एहसान की बात मत करो, बल्कि अपनी माँ को दिए हुए वचन को पूरा करो। और राधा, तुम्हारा क्या जवाब है अब?

वचन। अभी तक आपने सुनी माया श्रीवास्तव की लिखी झलकी। इस झलकी में भाग लिया मंजू शर्मा, देवेंद्र प्रसाद शर्मा, ज्योत्सना, राजेश माथुर और मंजू सिंह ने। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे सुरेश चंद।

महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आपने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था गुमराह। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की थी, संगीत दिया था रवि ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी के स्वर में। फिल्म है घराना, शब्द रचना शकील बदायूनी की, संगीत रवि का है।

मोहम्मद रफ़ी के सुर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था घराना। शब्द रचना शकील बदायूनी की थी, संगीत दिया था रवि ने।

अभी आपने सुना फिल्म भीगी रात का ये गाना, और इस गाने को गाया था लता मंगेशकर ने। इस गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत दिया था रोशन ने। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं फिल्म ब्रह्मचारी से। इस गीत को स्वर दिए हैं मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने। शब्द रचना हसरत जयपुरी की है, संगीत शंकर जयकिशन का है।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म ब्रह्मचारी का ये गाना। शब्द रचना हसरत जयपुरी की थी, शंकर जयकिशन का संगीत था और इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। एक कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, वनिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 11 मई को अपराह्न 1:15 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया, हृदय रोग विशेषज्ञ। हाँ, हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फ़ोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 12 22 55 75 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता 0565 कोड अवश्य लगाएं। ध्यान रहे, कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग, कारण, लक्षण और निवारण। श्रोताओं, ध्यान रहे, कार्यक्रम का दिन रहेगा सोमवार 11 मई 2026 और समय अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, FM 102.2 MHz पर। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls for collective efforts to build a developed India through environmental responsibility, youth empowerment and inner well-being. C. Joseph Vijay takes oath as Chief Minister of Tamil Nadu along with 9 ministers. Himanta Biswa Sarma unanimously elected as leader of BJP Legislature Party in Assam. Punjab's industry minister remanded to 7-day ED custody in over 100 crore rupee GST fraud case. Russian President Vladimir Putin says Ukraine conflict may be nearing an end. And in Archery World Cup, Indian women's recurve team clinches gold, defeating host China in a shoot-off in Shanghai. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi participated in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru today. He inaugurated the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Addressing the gathering, the Prime Minister lauded the role of the Art of Living Foundation in promoting service, spirituality and social transformation.
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं और इन्हीं पुरातन संस्कारों से भारत की भी अनेक संस्थाओं को प्रेरणा मिलती रही है
0: द प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो कॉल्ड फॉर कलेक्टिव एफर्ट्स टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया थ्रू एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी यूथ एम्पावरमेंट एंड इनर वेलबींग
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग मेंटल हेल्थ योग मेडिटेशन इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है
0: Mr. Modi also emphasized that societal participation was more powerful than political systems and was essential for nation building. The Prime Minister also launched the year-long projects of the Foundation on mental well-being, rural development, nature conservation and social transformation. Before proceeding to the Art of Living International Centre, the Prime Minister addressed BJP leaders and workers at HAL Airport in Bengaluru. The Prime Minister said BJP's victories in West Bengal, Assam and Puducherry reflect public support for the centre's policies and programmes. He said that people want a government that delivers good governance and fast solutions.
1: Bharat ki janta keh rahi hai ki hame speed chahiye, hame game nahi, solutions chahiye, hame राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए साथियों आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और कर्नाटका तो हमेशा से ही बीजेपी के लिए ऊर्जा का केंद्र रहा है
0: Attacking Congress, the Prime Minister accused the party of opposing the Nari Vandan Sanshodhan Bill in Parliament.
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी बड़ा खेल चला करता था बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया लेकिन साथियों कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया
0: Prime Minister Modi will travel to Hyderabad later today where he will lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9400 crore rupees in Telangana The Prime Minister will also inaugurate the PM Mitra Park at Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, developed under the PM Mitra scheme. He will also dedicate Sindhu Hospital to the nation.

मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। सरकार बनाने

0: का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा, यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: ஸ்ரீ விஜய் கே சாத் 9 மந்திரியோ நே பி சபத் லீ ஹே. இன்மே கே ஜி அருண்ராஜ், ஆதவ் அர்ஜுன், என் ஆனந்த், செல்வி எஸ் கீர்த்தானா ஆர் டாக்டர் டி கே பிரபு ஷாமில் ஹே. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक

0: बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसके बाद एजीपी और बीपीएफ के सभी विधायकों के साथ हुई संयुक्त बैठक में डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा को सर्वसम्मति से एनडीए का नेता स्वीकार किया गया। इन औपचारिक प्रस्तावों के बाद भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा ने आधिकारिक रूप से डॉक्टर शर्मा को भाजपा और एनडीए का नेता घोषित किया। निर्वाचित होने के बाद डॉक्टर शर्मा ने आज दोपहर को लोकभवन में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की। 102 विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाए जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित हैं, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी हैं। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का ये शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कॉर्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और

0: कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडिवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था, वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और ये रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
1: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
0: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिककाल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

FM 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत।

मोहम्मद रफ़ी के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था बरसात की रात। बोल लिखे थे साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था रोशन ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल ही तो है का ये गाना। और इस गाने को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। शब्द रचना साहिर लुधियानवी की, संगीत दिया है रोशन ने।

फिल्म अनोखी रात का ये गाना अभी आपने सुना, स्वर मोहम्मद रफ़ी का था, बोल लिखे थे कैफ़ी आज़मी ने, संगीत दिया था रोशन ने। और आइए आप सुनते हैं किशोर कुमार का गाया हुआ ये गाना, फिल्म है मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, शब्द रचना आनंद बख्शी की है, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

मुकेश के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था दुल्हा दुल्हन। शब्द रचना इंदिवर की थी और संगीत कल्याण जी आनंद जी का था।

महेंद्र कपूर के स्वर में अभी आपने सुना ये गाना। फिल्म का नाम था धूल का फूल। इस गीत को लिखा था साहिर लुधियानवी ने, संगीत दिया था एन दत्ता ने।

किशोर कुमार के स्वर में अभी आपने सुना फिल्म गैम्बलर का ये गाना, और इस गाने को लिखा था नीरज ने, संगीत दिया था SD वर्मन ने। और इस गीत के साथ ही हमारा आज का सैनिक भाइयों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। अपराह्न के 3 बजे हैं, हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। संध्या 5:30 पर आपसे पुनः भेंट होगी, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 5:30 हुए हैं, हमारी ये सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीवन में शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। सब कुछ खर्च हो जाता है, लेकिन शिक्षा मरते दम तक साथ जाती है। एक बार आपने शिक्षा ग्रहण कर ली तो एक ऐसा उपहार है जिसको ना कोई चोरी कर सकता है, ना कोई इसको अपने पास ले सकता है। शिक्षा बांटने से और बढ़ती है। हमारी सरकार द्वारा भी मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण

अर्थात पारंपरिक धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, हिंदी, अंग्रेजी और कंप्यूटर जैसे आधुनिक विषयों को शामिल करने की एक पहल है। इसका मुख्य उद्देश्य मदरसों के छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली NCERT के अनुरूप बनाकर उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा, रोजगार के अवसरों और तकनीकी ज्ञान से जोड़ना है। इसका जो उद्देश्य है वो है मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना ताकि छात्र पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी रूप से सक्षम भी बन सकें। धार्मिक शिक्षा के साथ साथ विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी की पढ़ाई भी छात्रों को कराना, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लासरूम जैसी सुविधाओं का विकास करना और साथ साथ आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति और उन्हें प्रशिक्षित करना। 1995 में शुरू हुई यह योजना अब यूपी सहित कई राज्यों में है, जिसका कि लाभ हमारे बच्चे ले रहे हैं। इसका जो लाभ है, छात्र छात्राओं को आधुनिक दुनिया की साथ साथ तालमेल बिठाने में मदद मिलना, रोजगार के अवसर मिलना, मुख्य धारा से जुड़ाव और साथ साथ धार्मिक ज्ञान के साथ साथ आधुनिक ज्ञान का भी ग्रहण करना। ये तो बात हुई मदरसा शिक्षा आधुनिकरण की। और अब आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

नशे का जहर लीजिए प्रस्तुत है आनंद वल्लभ गोस्वामी की लिखी झलकी। इसके प्रस्तुतकर्ता हैं आर के त्रिपाठी।

0: मिस्टर अशोक, आप जरा भी चिंता ना करें, मेरी दी हुई दवाओं और हिदायतों का बराबर ध्यान रखें। आपकी सिगरेट पीने की लत मैं बिल्कुल छुड़ा दूंगा।
1: डॉक्टर साहब, मैं आपका जीवन भर एहसान मानूंगा।
0: अरे भाई, इसमें एहसान की क्या बात है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार।
0: नमस्कार नमस्कार।

0: Next.
1: May I come in?
0: Yes, come in. तुम? अरे रमेश यहाँ?
1: अरे भाई मुझे कौन पहचानेगा, डॉक्टर जो बन गए हो ना।
0: अरे नहीं भाई नहीं, ये बात नहीं है।
1: तो क्या बात है?
0: दरअसल तुम इतने फैटी जो हो गए हो, पहचानने में भी नहीं आते यार।
1: आलोक वास्तव में मैं मोटा हो गया हूँ यार, कोई ऐसी दवा देना कि मैं पतला हो जाऊं।
0: अरे भाई इसमें दवा की क्या आवश्यकता है, सुबह सुबह 3-4 किलोमीटर की दौड़ लगाओ और देखो ये मिठाई खाना जरा कम कर दो।
1: 3-4 किलोमीटर की दौड़? अरे ना बाबा ना, ये तो वही बात हुई ना अपने लिए।
0: कौन सी बात?
1: चंदन लगाना सिर दर्द के लिए मुफीद है, पर चंदन घिसना भी तो एक सर दर्द है।
0: अरे वाह भाई वाह वाह वाह, तेरा वो शायराना अंदाज तो अभी तक नहीं गया। कॉलेज के समय में भी तू कितना हंसाया करता था, याद है ना?
1: अरे डॉक्टर साहब यही तो अपनी सेहत का राज है।
0: अच्छा तो अब समझा भाई, अब समझा।
1: और क्या यार, अपनी छोटी सी लाइफ है, हंस बोल कर काटो। ये भी क्या कि हर समय अपने काम को लेकर रोनी सी सूरत बनाए रहो।
0: जैसा कि कॉलेज के दिनों में कपूर था, हर समय सीरियस।
1: अरे हाँ यार, कपूर कहाँ है आजकल?
0: अपनी तो कॉलेज के समय के बाद कभी मुलाकात ही नहीं हुई उससे। मैं तो सीधा दिल्ली चला गया था ना।
1: उसके बाद तो उसने और मैंने साथ ही साथ एमए किया था, लेकिन कॉलेज के अंतिम दिनों में कपूर वह ड्रग्स लेने लगा था।
0: अरे नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, इतना अच्छा इंटेलिजेंट लड़का और कितना अच्छा कवि था वो, ऐसा नहीं हो सकता यार।
1: लेकिन ऐसा ही हुआ है आलोक, पहले तो मुझे ही विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में पता लगा कि कॉलेज के ही एक लड़के के द्वारा ड्रग्स माफियों ने उसे यह लत लगवाई थी।
0: और उसकी वो प्रेम का क्या नाम था भला उसका?
1: कौन, आरती?
0: हाँ याद आया, आरती। आरती ही तो था उसकी मासूका का नाम, उसने नहीं संभाला उसे।
1: पहले तो उसने बहुत कोशिश की उसे संभालने की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वह पूरी तरह नशे का आदी हो चुका था।

0: जी साहब।
1: रामदीन जरा दो कप कॉफी भेज दो।
0: जी साहब अभी लाया।
1: यार रमेश बड़ी सैड न्यूज सुनाई तुमने, फिर क्या हुआ?
2: फिर क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। आरती उसे छोड़ गई, उसकी कहीं और शादी हो गई।
1: ओह कैसा अच्छा होनहार था कपूर, कॉलेज के सभी प्रोफेसर उसकी कितनी तारीफ किया करते थे, कहते थे एक दिन कपूर बहुत बड़ा आदमी बनेगा।
2: यार आलोक, कपूर बड़ा शालीन और कुलीन था।
0: साहब कॉफी
1: लो रमेश। यार रमेश, कपूर था तो पुअर फैमिली का लड़का, फिर उसे पैसे कहां से मिलते थे इतनी महंगी महंगी ड्रेस के लिए?
2: शुरू में उसे लत लगाने के लिए कॉलेज के ही लड़कों ने मुफ्त में ड्रेस दी।
1: वो कॉलेज का लड़का लगता है ड्रग्स माफिया का ही एजेंट होगा।
2: हाँ।
1: ओह, कितने बड़े देशद्रोही हैं ये ड्रग्स माफिया के लोग, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ देना चाहते हैं, अपने ही देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं।

0: पेशेंट आया, उसे भी देख लो।
1: जी साहब।
2: रामदीन, देखो सीरियस पेशेंट बैठा है, उसे भेज दो।
1: अभी भेजता हूँ साहब। अरे भाई, आपको डॉक्टर साहब याद कर रहे हैं।
3: नमस्कार डॉक्टर साहब।
0: अरे आरती, तुम?
3: रमेश तुम? और डॉक्टर आप आलोक है ना?
2: जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, लेकिन ये
3: नहीं पहचाने से, ये कपूर है।
0: कपूर?
2: कपूर है ये, मगर इसकी ये हालत?
3: हाँ, यही इस अभागे की किस्मत है।
2: अरे रामदीन, इसे इधर लिटा दो।
4: हाँ हाँ।
2: अरे ये तो बहुत सीरियस है। हाँ देखो, संभाल के देखो उनके। हाँ,
0: लेकिन आरती तुम और इसके साथ?
3: मेरे पति इसी शहर में बैंक में सर्विस करते हैं। अभी बाजार जा रही थी तो अचानक फुटपाथ पर कपूर पड़ा दिखाई दिया। नशे के बिना तड़प रहा था शायद, मुझसे देखा नहीं गया। लोगों से पता चला कि डॉक्टर आलोक का क्लिनिक पास में है, सो तुरंत ले आई।
2: अभी ही तो मुझे कपूर के बारे में पता चला, रमेश ने ही तो बतलाया ये ड्रग्स लेने लगा है।
3: अब तो शायद इसकी जान ही लेके छोड़ेगा इसका नशा।
2: नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आरती, मैं अभी इसे इंजेक्शन देकर होश में लाता हूँ।
0: बैठो बैठो ना आरती, देखो क्या संयोग है, कॉलेज के दिनों के बाद हम चार लोग आज अचानक इकट्ठा हो गए।
3: लेकिन कितने बदले हालातों में।
2: देखो मैंने इंजेक्शन दे दिया है, अभी होश में आ जाएगा।
0: आरती, कितना बदल गया है कपूर।
2: कहां उसका वो आकर्षक और लुभावना व्यक्तित्व, और कहां आज ये दयनीय अवस्था।
3: नशे की लत इसे इतना बर्बाद कर देगी ये नहीं पता था मुझे। काश।
2: जो हो गया सो हो गया आरती, लेकिन तुम्हें इसी हालत में इसे यूं बेसहारा नहीं छोड़ना चाहिए था।
0: हाँ आरती, तुम्हारे बिछुए के नशे की आदत ने इसको और भी बढ़ावा दिया।
3: मैं सोचती थी कि मेरे कुछ दिनों के लिए दूर जाने से शायद कपूर की आदत छूट जाएगी।
0: कुछ दिनों के लिए? मगर तुम तो उसके बाद कभी आई भी नहीं।
3: हाँ, मैंने कपूर की आदत छुड़ाने के लिए ही वो रिश्ता तोड़ने का नाटक किया था, लेकिन तभी मेरे मम्मी पापा ने मेरी मर्जी के बगैर मेरी शादी तय कर दी, और अब मेरे पति ही मेरे लिए सब कुछ हैं।
2: लगता है कपूर को होश आ रहा है। कपूर, तुम ठीक तो हो ना?
4: मैं कहाँ हूँ? और तुम आलोक, यहाँ कैसे?
0: ये आलोक का ही क्लिनिक है।
4: तुम भी यही हो रमेश? और आरती तुम? ओह आप?
0: हाँ ये आरती हैं, तुम्हें ही फुटपाथ से यही तो उठा करके लाई हैं।
4: आप
3: वहाँ पड़े हुए तड़प रहे थे।
4: ओह हाँ, याद आया, मैं बिना नशे के तड़प रहा था।
2: लेकिन कपूर, तुम इस शहर में पहुंचे कैसे?
4: पूछो मत दोस्त, किस्मत भी जाने किस तरह रंग बदलती है। नशे की लत ने पहले मुझसे मेरी पढ़ाई छीन ली, फिर मेरी आरती को मुझसे दूर कर दिया, और उसके बाद मेरी माँ भी मुझसे छीन ली।
3: माँ? माँ? मगर कैसे?
4: मेरी माँ मेरे गम में बिस्तर पकड़ गई। एक दिन माँ की हालत बहुत सीरियस हो गई। पिताजी ने डॉक्टर बुलवाया, डॉक्टर ने जरूरी दवा और इंजेक्शन लिख दिए। पिताजी ने मुझे पैसे देकर बाजार भेजा। उस दिन पैसे के अभाव में मैं नशा नहीं कर सका, तो माँ के दवा के पैसे से ही ड्रग्स खरीदी। जब रात को घर लौटा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुकी थी।
2: माय गॉड,
4: माँ नहीं रही।
2: ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ।

0: पिताजी ने मुझे मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। फिर कुछ दिनों तक मैं ड्रग्स माफिया के लिए काम करता रहा और बदले में वे लोग मुझे नशे का जहर देते रहे।
1: लेकिन आज तो तुम
0: बताता हूँ। एक दिन पुलिस मेरे पीछे पड़ गई और मैं ड्रग्स की थैली एक नाले में फेंक कर भाग निकला और मैं शहर में आ गया। लेकिन बिना नशे के मेरी हालत ठीक वैसे ही हो जाती है जैसे बिना पानी के मछली।
2: अब क्या विचार है कपूर तुम्हारा?
0: मैं मरना चाहता हूँ रमेश, मैं मरना चाहता हूँ।
1: जिस जहर ने तुम्हारा संसार लूट लिया उसके पीछे अब अपनी जान भी दे दोगे क्या?
0: और कोई उपाय भी तो नहीं है, कौन बचाएगा मुझे इस जहर से?
3: मैं बचाऊंगा तुम्हें, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी संकल्प करना होगा। आज के बाद कभी नशे की दवा को हाथ तक नहीं लगाओगे। मैं करूंगा तुम्हारा इलाज।
2: हाँ कपूर, हाँ संकल्प लो।
1: आज से कभी जहर को हाथ नहीं लगाओगे?
0: मैं संकल्प लेता हूँ कि आज से कभी भी इस जहर को हाथ नहीं लगाऊंगा, भले ही इसके बिना मैं मर ही क्यों न जाऊं।
4: अभी तक आपने सुनी आनंद बल्लभ गोस्वामी की लिखी झलकी नशे का जहर। इसमें भाग ले रहे थे विजेंद्र सिंह अटौरिया, सत्यपाल सिंह, भगवान सिंह चौहान, मदन सिंह, किशन सिंह कुशवाहा और बबीता शर्मा। इस झलकी के प्रस्तुतकर्ता थे आर के त्रिपाठी।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कम ब्याज पे लोन चाहिए,
3: वो भी ऐप से।
4: अनजान ऐप से बचें।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आशा भोसले और उदित नारायण को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था जुल्मी। इसी के साथ आज का युवाणी कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लीकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है।

0: राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए नीट यूजी 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह की जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे देशगान। ब्रज ग्रामीण कार्यक्रम होगा 6:15 पर। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे मृदुल कुमार पांडे। आप सुनेंगे चर्चा गर्मियों में दुधारू पशुओं के आहार के बारे में। इसके अलावा आप सुन सकते हैं अपनी ही पसंद के लोकगीत मनभावन क्रम में। संध्या वंदन कार्यक्रम होगा 6:45 पर, जिसमें आप सुनते हैं कुछ फिल्मी भक्ति गीत। उद्धव सदस्यों पाठ हम आपको सुनवाएंगे 7:05 पर।

प्रादेशिक समाचार 7:18 पर हम आकाशवाणी लखनऊ से लेकर आएंगे। कार्यक्रम शाम सुहानी आप सुन सकते हैं 7:31 पर। यह कार्यक्रम होता है फरमाइशी फिल्म संगीत पर आधारित। रात्रि 8 आप सुनेंगे फिल्म संगीत। देशगान एक बार पुनः आप सुनेंगे 8:20 पर, एक ही फिल्म से। यह कार्यक्रम होगा 8:30 पर। आज आप सुनेंगे आंखें फिल्म के कुछ गीत। सुहानी तराने आप सुन सकते हैं 9:15 पर। प्रादेशिक संगीत का कार्यक्रम 9:30 पर प्रसारित होगा। रात्रि 10 आप सुनेंगे रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा का कार्यक्रम। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली

चलिए करेंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए श्रोताओं। वंडिता लोक कार्यक्रम के अंतर्गत हेलो सहेली कार्यक्रम में इस सोमवार 11 मई को अपराह्न 1:15 से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग कारण लक्षण और निवारण। इस कार्यक्रम में जानकारी देने के लिए हमारे विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर वरुण सिसोदिया जो कि हृदय रोग विशेषज्ञ हैं। अगर आप हमारे टेलीफोन नंबर 25 30 135 पर फोन करके अथवा मोबाइल नंबर 94 122 25 575 पर व्हाट्सएप संदेश भेजकर इस कार्यक्रम में हृदय संबंधी रोग कारण लक्षण और निवारण से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। मथुरा से बाहर के श्रोता कोड 0565 अवश्य लगाएं। ध्यान रहे कार्यक्रम का विषय है हृदय संबंधी रोग कारण लक्षण और निवारण। दिन रहेगा सोमवार 11 मई 2026 अपराह्न 1:15। सूचना समाप्त हुई। आइए सुनते हैं देशकांत।

सब भैयान को हमारी राम राम। भैया जा समय खूब गर्मी पड़ रही है, हमारे भैया करे हैं पशुपालन और ऐसी गर्मी में जी जानवर बहुत आवश्यक है कि दुधारू जो हमारे पशु हैं बिनको कैसो आहार दियो जाए जो कि उनकी सेहत और दूध के काजे लाभप्रद होए। गर्मी में भैया दुधारू पशु को संतुलित ठंडो और रसीलो आहार देना चाहिए ताकि दूध उत्पादन प्रभावित न होए। हरे चारे की मात्रा बढ़ाएं। गर्मी में हरो चारो पशु के शरीर में नमी बनाए रखे है और उनको ठंडो रखे है। नेपियर घास, बरसीम, ज्वार, बाजरा और मक्का को हरो चारो सबसे अच्छा हुए है। भैया गर्मी में पचवे में आसान दानों देना चाहिए, गेहूं को दलिया, चोकर और चने की चूरी जाके काजे उत्तम है। सरसों की खली की जगह मूंगफली या बिनोला खली दे वो बेहतर है क्योंकि जी तासीर में कम गर्म हुए है। गर्मी में पशु को 50-60 लीटर से अधिक पानी की आवश्यकता हुए है। पानी हमेशा साफ और छायादार स्थान पर रखें। पशु के स्वास्थ्य और दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के काजें 50 ग्राम खनिज लवण और 30 से 50 ग्राम नमक रोजाना दे में। भैया चारा सुबह और शाम को ही खिला में, दोपहर में न दें। अजोला प्रोटीन को बेहतरीन स्रोत है, जाए खिलाए ते दूध उत्पादन में वृद्धि हुई है और खली को 4-5 घंटे पानी में भिगोए के खिलाना बेहतर हुई है। भैया एक बात और।

के परसून को चिलचिलाती धूप ते बचा में और चारे के संग संग उनके शरीर को ठंडो रखबे को नहलाए। आज की जा बात के बाद भैया अब सुनवा रहे हैं मन भावन क्रम में दामोदर शर्मा के स्वर में जी लोकगीत।

दामोदर शर्मा के स्वर में भैया सुन रहे हैं जी लोकगीत। अगला लोकगीत है ओम प्रकाश गोप के स्वर में, भैया सुनो।

पानी की खातिर कर दे तेरे गम सगाई। अरे तेरे गम को मीठो पानी फूले लाए समाई, और तेरे गम को मीठो पानी

भैया आनंद ले रहे हे जालोक गीत को, स्वर हो ओम प्रकाश गोप को। भैया कार्यक्रम में अभी और लोकगीत हैं, लेकिन बातें पहले एक ऐसी बात और कर लें जो कि हमारे आपके सबके काज हैं, बहुत ज़रूरी है, और जी बात है जनगणना की। भैया भारत की 16वीं जनगणना को पहलो चरण 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगो, जो पूरी तरह से डिजिटल होएगो। जी आवास सूचीकरण चरण है, जहाँ में मकान और सुविधान की जानकारी ली जाएगी। जावार स्वगणना के जरिए नागरिक वेबसाइट पर खुद ही जाके फॉर्म को भर सके हैं। भैयाओ, प्रथम चरण में घर के प्रकार, पीने को पानी, बिजली, शौचालय, इंटरनेट, मोबाइल, वाहन जैसी सुविधाओं से जुड़े हुए 33 से 34 प्रश्नों के उत्तर मांगे जाएंगे। स्वगणना के काजें भैयाओ आधिकारिक पोर्टल sec.census.gov.in पर जाके राज्य को चयन करें और मोबाइल नंबर ईमेल के संग पंजीकरण करें, घर की मैपिंग करें और सामान्य प्रश्नन के उत्तर दें। सबमिट करने के बाद 15 अंकन की SE ID प्राप्त होगी। भैया स्वगणना एक अतिरिक्त सुविधा है, यदि आप स्वगणना ना करेंगे तो प्रगणक आपके घर आके जानकारी दर्ज करेगो। जी सुविधा हिंदी, अंग्रेजी और 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जहाँ में काउ दस्तावेज के अपलोड करवे की आवश्यकता ना है। भैया एक जानकारी और दे दें कि जनगणना में भाग लेना अनिवार्य है, गलत जानकारी देवे या मना करवे पे जुर्माना हूँ लग सके है। तो भैया जनगणना के जा काम में अपना सहयोग दियो। और जा बात के संग ही अब सुनवा रहे हैं जी लोकगीत। भैया सुनो, स्वर हैं डोरीलाल गोला के।

डोरीलाल गोला के स्वर में भैया ने सुनो जी लोकगीत। अब सुनो जी अगला लोकगीत, स्वर दियो है कृष्णा कुमारी माथुर ने।

अभि भैयान ने आनंद लियो जा लोक गीत को, स्वर हो कृष्णा कुमारी माथुर को। जाई के संग भैया और विराम दे हैं आज के जा कार्यक्रम को, सब भैयान को हमारी राम राम।

0: 백발! 우와! 민반기야!
1: यूपीआई पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: आरबीआई कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, संध्या वंदन।
4: हाँ उल्लू का पट्टा बोलिए।

आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम था खानदान। संध्या वंदन कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है।

0: निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नागर कृत उद्धव शतक की संगीत में प्रस्तुति। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता, प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

हे उद्धव, आप हमसे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हम प्रेम और भक्ति को त्याग कर ज्ञान और योग को अंगीकार कर लें? ये उपदेश तो ऐसा है उद्धव, जैसे कोई कहे कि चिंतामणि जैसे बहुमूल्य रत्न को फेंक दो और कांच के कच्चे टुकड़े को उठाकर उनकी सार संभाल करो। हम इतनी मूर्ख नहीं है उद्धव जो तुम्हारे बहकावे में आकर सगुण श्री कृष्ण को छोड़ दें और निर्गुण ब्रह्म को अंगीकार कर लें। गोपियां कहने लगी कि हे उद्धव, वियोग रूपी आग को शांत करने के लिए तुम हमें प्राणायाम करने का उपदेश देते हो। तुम्हारा ये उपदेश कितना विपरीत है। हमारी विरह व्यथा को प्राणायाम रूपी हवा से शांत करने के लिए तुम हमें उपदेश दे रहे हो। हवा से आग बढ़ती है उद्धव, बुझती नहीं, अर्थात प्राणायाम से वियोग व्यथा बढ़ जाएगी। हे उद्धव, जिस ब्रह्म को तुम पूर्णतः निराकार एवं निर्गुण बता चुके हो, उसी निराकार का ध्यान करने और उसमें लीन हो जाने का तुम हमें उपदेश दे रहे हो। भला निर्गुण निराकार का ध्यान कैसे संभव है? हे उद्धव, जो ब्रह्म इतने बड़े संसार में आंख खोलकर देखने से प्राप्त नहीं होता, उसी ब्रह्म को तुम आंखें मूंदकर त्रिकुटी जैसे छोटे स्थान में देखने का उपदेश दे रहे हो। गोपिकाओं की यह शंका अत्यंत स्वाभाविक और तर्क सम्मत है। जिस ब्रह्म को इस विशाल संसार में आंख खोलकर नहीं देखा जा सकता, उसी ब्रह्म को त्रिकुटी में देख लेना और वो भी आंखें मूंदकर निश्चय ही अत्यंत दुष्कर कार्य है।

हे उद्धव, आप मथुरा से हमें योग संयोग सिखाने आए हो, तो वियोग के वचन मत बोलो। आपने हमारे ऊपर बड़ी दया की जो हमारा दुख दूर करने के लिए यहाँ आए, किंतु यदि आप दुख दूर नहीं कर सकते, कृपा करके ऐसी बातें तो मत कहिए जो हमारा दुख बढ़ाने वाली हैं। हे उद्धव, आप कृपा करके वाणी रूपी कठोर पत्थर हमारे हृदय पर न चलाएं, क्योंकि इससे हमारा मन रूपी दर्पण टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त हो जाएगा। जितने टुकड़े इस मन रूपी दर्पण के होंगे, उतने ही कृष्ण मन में बस जाएंगे, क्योंकि हर टुकड़े में कृष्ण का ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब आप ही विचार करें कि हमने एक कृष्ण को हृदय में बसाया जिसने हमें उजाड़ दिया और हमारी ये दशा कर दी। अब यदि हृदय में अनेक कृष्ण बस गए तो उद्धव हमारी क्या हालत होगी? आप ही अनुमान करें, आप ही अनुमान लगाएं। कृपया भूलकर भी योग एवं निर्गुणोपासना की कठोर वाणी न बोलें। इसी में आपका और हमारा कल्याण है।

अभी आप सॉफ्टवेयर कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत जगन्नाथ दास रत्नाकर कृत उद्धव शतक की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे अंशुना सक्सेना और आशु रावत। वादक कलाकार थे बांसुरी पर मोहन श्याम पचौरी, वायलिन पर शकील अहमद, तबले पर गुलाम अहमद, पखावज पर राधा रमन दास, साइड रिदिम सत्यनारायण शर्मा और ऑर्गन पर आशीष कुमार अग्रवाल। संयोजक एवं वाचक यतीन्द्र चतुर्वेदी। संगीत संयोजक सुरेश गुप्ता और प्रस्तुतकर्ता मोहित कुमार।

0: मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। शाम के 7:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
1: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
2: बिल हो रहा है।
1: चल अपना कार्ड दे।
3: कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 192,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में आज लखनऊ के जनभवन के गांधी सभागार में प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 6 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। पेश है एक रिपोर्ट।
1: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में ये सभी राष्ट्र प्रथम के भाव और जनसेवा तथा सुशासन के संकल्पों के साथ सभी नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को गति प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों की कुल 624 पदों के लिए 2 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्वक संपन्न हो गई। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सभी परीक्षा केंद्रों पर पूरी पारदर्शिता, नकल विहीन और सुव्यवस्थित माहौल में परीक्षा संपन्न कराई गई। आयोग में स्थापित AI एकीकृत नियंत्रण कमांड कक्ष में सभी परीक्षा केंद्रों की सतत निगरानी की गई और परीक्षा केंद्रों पर लगे AI कैमरों के माध्यम से परीक्षार्थियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई। 2 दिनों में कुल 192,934 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। तकनीकी नवाचार और पारदर्शिता को और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लखनऊ जनपद के चयनित परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा समाप्ति के तत्काल बाद परीक्षार्थियों द्वारा प्रयुक्त OMR उत्तर पत्रिकों की स्कैनिंग परीक्षा कक्ष में ही कराई गई। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। धार्मिक महत्व के अलावा सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल

0: संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: श्री राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन मिश्र ने आज अयोध्या में समिति की बैठक के बाद बताया कि श्री राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अब पूरा हो चुका है और परिसर में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: राम मंदिर परिसर को दिव्य और भव्य रूप प्रदान करने का कार्य लगातार जारी है। राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेन्द्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर के मुख्य निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं और अब परिसर के सौंदर्यीकरण के साथ ही आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से काम चल रहा है। कार सेवकों की याद में बन रहा भव्य शहीद स्तंभ 15 जून तक तैयार हो जाएगा तो सुरक्षा के लिए 4 किलोमीटर लंबी हाईटेक बाउंड्री वॉल भी बनाई जा रही है। यही नहीं, परिसर में निर्मित हो रही आधुनिक म्यूजियम, 7D गैलरी और आकर्षक फसाद लाइटिंग की सुविधा श्रद्धालुओं को विशेष धार्मिक आनंद का अनुभव कराएंगी। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इन उपायों से संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान में देरी और वैधानिक देय राशियों के भुगतान में चूक की गुंजाइश कम होगी। श्रम संहिता के तहत समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। कर्नाटक राज्य से सबसे अधिक 6 ग्राम पंचायतों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। वहीं प्रदेश के आगरा जिले की बिरहारू ग्राम पंचायत भी पुरस्कारों की सूची में शामिल है। प्रदेश में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण में स्वगणना की प्रक्रिया तेजी से जारी है। विभिन्न जिलों में जन जागरूकता रैलियों और संगोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में हमीरपुर में मीडिया डे का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के विभिन्न मीडिया संस्थानों और पत्रकारों ने स्वगणना की प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस दौरान जिला सूचना अधिकारी ने मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे जनगणना जैसे महत्वपूर्ण अभियान को जन जन तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मदर्स डे के अवसर पर स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंसर फ्री वुमेन भारत यात्रा आनंदी मां एक जीवन बचाओ अभियान रैली का आज लखनऊ में हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर श्रीमती पटेल ने कहा कि महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की मजबूती का आधार है। समय पर जांच और जरूरी सावधानी बरतने से कैंसर की रोकथाम की जा सकती है। रैली में करीब 150 लोगों ने सहभागिता कर महिलाओं की सेहत, कैंसर जागरूकता और स्वास्थ्य भारत के संकल्प को लेकर समाज को जागरूक करने का संदेश दिया। 1857 के पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की गौरव गाथा और क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में आज मेरठ में जिलाधिकारी की अगुवाई में गांधी आश्रम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी में सिविल डिफेंस, स्वयंसेवकों, आम जनमानस, स्कूली छात्राओं, विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों सहित बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वर्षगांठ पर अमर शहीदों और वीर क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए

0: कहा कि ये महासमर पराधीनता की बेड़ियों को छिन्न भिन्न करने का साहसिक और संगठित प्रयास था जिसने संपूर्ण राष्ट्र में आजादी की अलख जगाई। प्रदेश में एक बार फिर मौसम का रुख बदल गया है। हल्की बारिश के बाद अब दिन के तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने राज्य में आज से 14 मई के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव होने से कानपुर, आगरा और लखनऊ सहित आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ तेज आंधी और बारिश का अनुमान जताया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भूपेन चौधरी, मनोज पांडे समेत 6 नए मंत्रियों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। 2 राज्य मंत्रियों का बढ़ाया गया दर्जा। प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई प्रवक्ता संवर्ग लिखित परीक्षा। कुल 1,92,934 परीक्षार्थी हुए शामिल। अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण समिति की हुई बैठक। चेयरमैन नृपेन मिश्र ने कहा, परिसर में आधुनिक सुविधाओं पर तेजी से हो रहा है काम। और केंद्र सरकार ने की राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा। आगरा की बिरहारू ग्राम पंचायत का नाम भी विजेताओं की सूची में शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: सेल्फी लेंगे।
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी।
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं? नो शेयरिंग।
2: RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मीडियम वेव 4.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। शाम के 7:31 हुए और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पत्र के लिए धन्यवाद। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं सुमना एस पांडे और नीना सोनकर।

0: पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी नीना सोनकर का प्यार भरा नमस्कार
1: और सभी
2: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम श्याम सोहानी। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले संदेश हमें मिला है रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, ऋषि शिंदे और कृष्णा गौड़ के। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत। केथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा। मोहाली से टीडी मल्होत्रा, शुभचंद बजाज। बिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव और गर्मा शर्मा। ग्राम अमलीडीह कबरदा छत्तीसगढ़ से संतोष राजपूत, हेम प्रभा, पूर्वी गौरव और उनके परिवारजन। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, निशानी और निमित्त। शनि मंदिर चौक खंडवा से दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव, ईशान और कार्तिक सैनी।

अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आशिकी। अब हमें संदेश मिला है दंत रैगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखीलाल वर्मा। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत और गुरशब्द और राहुल। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, सहनबाज अब्बासी, नवेद हसन और सोहेल हसन, अनुम अब्बासी और यशप अब्बासी। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर यमेकर, प्रमोद और प्रदीप, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार, सोनम वर्मा, और ये संदेश हमें मिला है संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया, चौहलदा बागपत से मास्टर विट्ठल, सुरेशे, सुषमा, परिधि, मायरा, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से, नई बस्ती गंज डोडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर और मोहम्मद कलीम अंसारी, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान, कन्नौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, राहट गाम कैंप अमरावती महाराष्ट्र से हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय, रुद्रा और रामेकर परिवार, रुचिका रामेकर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष रजा, चैतन्य मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान और इनके परिवारीजन, दरियापुर भावली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप, अशोक, शहरी बड़नेर अकोला से अरुणा वलदेव, दामोदर, आदित्य दामोदर। आप सभी सुनना चाहते हैं ये गीत।

राजा और रंग, इस फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। अब हमें संदेश मिला है ऊपर कोट मोहल्ला चौखंटी बुलंदशहर से। मोहम्मद शहीद अब्बासी, निखत परवीन अब्बासी, सहानबाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान और अवान अब्बासी गांव केरो जिला तरन तारण पंजाब कुदर्शन से लाल, चलूत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद, पोत्रा, गुरबशद और इनके परिवारीजन पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किस्सू, तासु, अर्णव और सत्यव आनंद ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, कोटबा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से दुविहा नेविदा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण और जोहनला होंदा, फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हयाश कुमार चंदन मगर लोड छत्तीसगढ़ से, नलेश्वर नगर हरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला और विशाल, मलकापुर से नारायण, राजकुमार, आशीष और इनके परिवारीजन नाज पैलेस अजमेर शरीफ से सैयद आलम हाशमी, सलमा, असद और अरहाम, आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शायना और निवान शर्मा, आप सब सुनना चाहते हैं ये गीत।

सिंह चावला, शिव कुमार शर्मा, लोकेश जोशी, बेबी बेदही जोशी और आंशिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती केवट, बिलाई छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन लाल देवांगन, हेमलता और डिम्पल, राही नगर गुंजडवारा से शमशुल खान, अदनान खान, फैजान खान, ताविश आवाद और अनु खान, ककुड़वी बस्ती अररिया बिहार से नफीसा प्रवीण, शगुत्था प्रवीण, नाजिया और फौजिया, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज पोत्रे और शुभदीप सिंह, जिला लोहागढ़ ठाकुरावाला, जिला फिरोजपुर पंजाब से सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बल्लू निषाद, तरुण यादव, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्वनी, विपुल कांबड़े, साधुर शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार टूडी, प्रमोद कुमार टूडी, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री, प्रमोद कुमार साहू, बीमा बेहफी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशी साहू, बोर्ड सरा नेता नेला छत्तीसगढ़ से अरुण शाह और साजिया बानो मूर्तरापुज महाराष्ट्र से, लातूर से संगीता जैन, सूरज जैन, पीआर जैन, सब्जी मंडी झज्जर से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। और अब आज का ये कार्यक्रम शाम सुहानी यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, फिल्म का नाम था प्रेम रोग। अब हमें जो संदेश मिले हैं, भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी हरविंदर

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था रामलखन।
1: Story, but everybody will sing with me.
2: Okay,
1: ready?

आप सुन रहे थे यशुदास को, फिल्म का नाम था दादा। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है, आइए सुनते हैं देशगान।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है एक ही फिल्म से इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं आंखें फिल्म के कुछ गीत सबसे पहले सुनते हैं ये गीत

से कार्यक्रम इसी के साथ संपन्न होता है। आज आपने आंखें फिल्म के कुछ की सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए
1: आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटिबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
2: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है।

0: आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
0: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपुर निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपुर दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर

0: डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच त्रिनिदाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, निल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की 2 दिवसीय यात्रा संपन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की 2 पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, दो कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत आठ क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana, stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts two cabinet ministers and four state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements, including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
2: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है, ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है, पेट्रोल, डीजल, गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
1: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड ऑल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मिस्टर मोदी सेड ही विल लाइक टू अश्योर एवरी फैमिली इन तेलंगाना दैट सेंटर विल कंटिन्यू टू वर्क विद ग्रेटर स्पीड टू रियलाइज योर ड्रीम्स।
2: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
1: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development.

किशोर कुमार को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था आराधना। बरसात की रात फिल्म में आइए सुनते हैं लता मंगेशकर को।

बरसात की रात फिल्म में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को। किशोर कुमार को आइए सुनते हैं फिल्म याराना में।

आप सुन रहे थे किशोर कुमार को, फिल्म का नाम था याराना। सुहाने तराने का ये कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। 9:30 हो रहे हैं, आइए सुनते हैं प्रादेशिक लोक संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं कुछ कुमाऊनी

आप सुन रहे थे महेश्वरी बिष्ट को, प्रादेशिक लोक संगीत कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं कुमाऊनी लोकगीत। आइए आप सुनते हैं वीना तिवारी को।

समवेत स्वरों में गाए इस गीत के साथ ही प्रादेशिक संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने कुआनी लोकगीत सुने। आकाशवाणी का ये मथुरा वृंदावन केंद्र है FM 102.2 MHz पर। रात्रि के 10 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी दिल्ली से लेकर आएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: है विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन। आपके साथ मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली एवं घटम पर श्री एम चंद्रकांत संगत दे रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वीणा रिसाइटल बाय विद्वान डी श्रीनिवास। अकंपनीइंग हिम ऑन मृदंगम इज श्री यशवंत हम्पी होली एंड ऑन घटम श्री एम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास तेलंगाना के एक अग्रणी कर्नाटक संगीतकार हैं। एक संगीत परंपरा वाले परिवार में जन्मे श्रीनिवास ने 7 साल की उम्र में अपनी मां श्रीमती डीएल तुलसी के मार्गदर्शन में वीणा शिक्षा का श्री गणेश किया। 9 साल की उम्र तक वे एक बाल प्रतिभा बन चुके थे। इसके बाद उन्होंने विद्वान श्री एन एस श्रीनिवासन के द्वारा उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त किया। 4 दशकों से अधिक समय से संगीत की सेवा के कारण वे अब एक टॉप ग्रेड वीणा कलाकार हैं और उन्हें उगादी विशिष्ट पुरस्कारम तथा डॉक्टर इमनी शंकर शास्त्री पुरस्कार और वैनिका रत्न वैनिका चक्रवर्ती जैसे उपाधियों से भी सम्मानित किया गया था। एक वैश्विक कलाकार के रूप में श्रीनिवास ने संयुक्त राष्ट्र और लंदन के क्वीन एलिजाबेथ हॉल में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने गिटार शैली में वीणा बजाने जैसी नई तकनीकों का आविष्कार किया है जिससे वीणा संगीत की सीमाओं का विस्तार हुआ है। एक शिक्षक के तौर पर उन्होंने 350 से अधिक विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के एक सच्चे राजदूत के रूप में विद्वान डी श्रीनिवास आज भी आने वाली पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित कर रहे हैं।
1: विद्वान डी श्रीनिवास ए ट्रायल ब्लेजिंग कर्नाटिक म्यूजिशियन from Telangana was born into a musical lineage. He began the art of veena at the age of 7 under the guidance of his mother Srimati D. L. Tulasi. By the age of 9 he was a child prodigy. The advanced training followed under Vidwan Sri N. S. Srinivasan. With over 4 decades of dedication he is a top grade veena artist with Akashvani and recipient of awards like Ugadi Visishta Puraskaram and Dr. E. Mani Shankara Shastri Award and the titles like Vainika Ratna and Vainika Chakravarti. A global performer, Srinivas has represented India at the United Nations and also performed at Queen Elizabeth Hall in London. His innovative techniques like guitar style plucking pushed the boundaries of veena music. As an educator, he has trained more than 350 students. A true ambassador of Indian classical music, Vidwan D. Srinivas continues to inspire generations.
0: आज रात के प्रसारण में विद्वान डी श्रीनिवास के साथ मृदंगम पर संगत कर रहे हैं श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री एम चंद्रकांत।
1: In tonight's broadcast, Vidwan D. Srinivas is accompanied on mridangam by Sri Yashwant Hampi Holi and on ghatam by Sri M. Chandrakant.
0: Vidwan D. Srinivas ne apne veena vadan ki shuruaat raag gola mein Mysur Vasudevachar ki ek rachna se kar rahe hain jo aadi taal mein nibadh hai.
1: Vidwan D. Srinivas begins his veena recital with a composition of Mysur Vasudevachar in the raag gaula set to aadi taal.

0: अब आप राम स्वामी शिवन की एक रचना सुनेंगे जो राग सरसांगी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है।
1: नाउ यू विल लिसन टू अ कॉम्पोजिशन ऑफ रामस्वामी शिवन इन द राग सरसांगी सेट टू खंड चापू ताल।

0: अपना वीणा वादन जारी रखते हुए विद्वान डी श्रीनिवास अब त्यागराज की एक रचना प्रस्तुत करेंगे जो राग नासिका भूषणी तथा आदि ताल त्रिस्र गति में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हिज वीणा रिसाइटल, विद्वान डी श्रीनिवास विल नाउ प्रेजेंट अ कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन द राग नासिका भूषणी सेट टू आदिताल त्रिस्र गति।

0: था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पीहोली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया।
1: दैट वॉज तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय श्री यशवंत हम्पीहोली एंड ऑन घटम बाय श्री यम चंद्रकांत।
0: विद्वान डी श्रीनिवास अपने वीणा वादन का समापन सदाशिव ब्रह्मेंद्र की एक रचना से कर रहे हैं, जो राग अहिर भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: विद्वान डी श्रीनिवास कंक्लूड्स हिज वीणा रिसाइटल विद अ कॉम्पोजिशन ऑफ सदाशिव ब्रह्मेंद्र इन द राग आहिर भैरवी सेट टू आदिताल।

0: इसके साथ ही आज की रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा में विद्वान डी श्रीनिवास का वीणा वादन अब संपन्न होता है। आपके साथ संगत कर रहे थे मृदंगम पर श्री यशवंत हम्पी होली और घटम पर श्री यम चंद्रकांत। ये संगीत कार्यक्रम रवि राष्ट्रीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियोज में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हुआ।
1: With that, we conclude the Veena recital by Vidwan D. Srinivas in the broadcast of Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha. He was accompanied on Mridangam by Shri Yashwant Hampiholi and on Ghatam by Shri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravi Vasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही क्षण बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।

0: इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की सब खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।